Okay, Dallas, that was Roop Di Rani from the movie Pati Patni Aur Wo Do. अगर आपने नहीं देखा, it's already on Netflix. Go watch it. So, एक काम करो, आज के लिए बस ऑफिस का टैब क्लोज कर दो यार. लैपटॉप बंद कर दिया. Good job. अब दिमाग का लैपटॉप भी थोड़ा शट डाउन करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है ना, मंडे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मंडे की नहीं होती, वो हमारी होती है. मंडे का प्रॉब्लम होता है कि हम फिजिकली घर आ जाते हैं, लेकिन मेंटली अभी भी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में कितने लोग बैठे हैं. आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि ओ, ये ईमेल तो मैंने भेज दी थी, है ना. हेलो डैलिस, मैं हूँ स्निग्धा और वेलकम है आपकी दिल से डैलिस विद स्निग्धा में ऑन फन एशिया 104.9. लेट्स स्टार्ट आवर मंडे आफ्टर वर्क 7 to 10 शो. लेट मी प्ले फॉर यू द फर्स्ट सॉन्ग.

मंडे की शाम है, वो टाइम जब कुछ लोग जिम जाने का प्रॉमिस कर रहे हैं। आई नो संडे के दिन भी आपने कर ली होगी, मंडे है ना, कल कल से स्टार्ट कर लूंगी। कुछ लोग डिनर डिसाइड कर रहे हैं और कुछ लोग बस ये सोच रहे हैं कल का काम भी आज कर लूँ क्या। ब्रो इतनी जल्दी क्या है, कल का इंसान भी आप ही होने वाले हो, तो कल का काम कल के लिए रखिए। अभी बस एंजॉय कीजिए फनी एशिया में अच्छे अच्छे गाने।

पैसा पैसा पैसा, हाउ कैन यू मेक योर वाइफ हैप्पी? मैं बताऊँ आपको, गेटिंग योर ओन होम, अ ड्रीम होम. सो वी हैव अ ड्रीम होम मॉर्टगेज जो हमें इतना मदद करेंगे, यू विल बी विथ सीमलेस होम ओनरशिप जर्नी विथ कॉन्फिडेंस. तो अगर आप अगर होम मॉर्टगेज के लिए देख रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर ड्रीम होम मॉर्टगेज गाइज. अगर अपनी बीवी को खुश करनी है तो घर ले लो ना, एक आसान तरीके से जो हमें ड्रीम होम मॉर्टगेज करती है. सो गो एंड चेक ऑन ड्रीम होम मॉर्टगेज, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन इवन कॉल देम ऑन 972-245-5226 पर. नेक्स्ट ट्रैक इज रेडी आपके लिए.

एक कलीग जो हर मीटिंग में बोलता है लेट सर्कल बैक, और वो सर्कल कभी कंप्लीट ही नहीं होता है यार। या वो पर्सन जो ईमेल में लिखता है जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, और नीचे उसके नीचे होते हैं और लाइक 1400 या कुछ की वर्ड्स, और बोलते हैं जस्ट अ क्विक क्वेश्चन। कॉर्पोरेट दुनिया में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जिन्हें सुनते ही समझ में आ जाता है कि बस ये इजी नहीं होने वाला है। दैट्स लाइक अ क्विक कॉल, जस्ट अ स्मॉल अपडेट एंड वन लास्ट थिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, पर हमारी मंडे ज़रूर ख़त्म होने वाली है। यू आर ऑलमोस्ट होम फ्रॉम ऑफिस, सो रिलैक्स एंड चिलैक्स।

0: लवर तो हम सब बना ही लेंगे, बट इट्स टाइम फॉर इक्विटी. यू नो, इट इज़ गुड टू ऑलवेज हैव गुड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज. अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज में कोई मदद चाहिए, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या रियल इस्टेट की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको जहाँ जाना चाहिए, इट इज़ मी हुज़ गोना टेल यू दैट्स माई टाइम इक्विटी. इट्स बेटर टू ऑलवेज सेव एंड हैव गुड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज. आई नो लॉट ऑफ अस माइट बी डूइंग आर मास्टर्स, थिंकिंग हम ग्रो कैसे होए और हम इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें. जहाँ करनी है मैं बता रही हूँ, दैट इज़ माई टाइम equity.com. यू कैन गो एक्सप्लोर देयर वेबसाइट एंड यू कैन इवन कॉल देम ऑन 469-702-1272 टूडे एंड स्टार्ट स्ट्रैटेजाइजिंग योर फाइनेंसेस एंड बढ़ो अच्छे से और बिकम रिच ही रिच विद अ गुड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज गाइस.
1: रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे.

0: चिस्पा।
1: उठा माजा किंग, ओ माजे किंग। घरी नहीं साइड सका।
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड, रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
16: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
18: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
16: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
19: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
20: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
19: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
20: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
19: क्यों?
20: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरी।

हीरो लगता है बिकॉज इट्स नन अदर देन रोहित सराफ. आई नो लॉट ऑफ गर्ल फैंस आर हियर टू डाई फॉर रोहित सराफ. आपको पता है मिस मैच सीजन 3 का ऑलरेडी शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड आई एम सो हैप्पी. दिस इज़ फॉर ऑल रोहित सराफ लवर्स. जब भी मैं इनको देखती हूँ लगता है वाह ही लुक सो डैशिंग एंड कूल राइट. और व्हेन आई वाज थिंकिंग आज मेरी मीटिंग में आई वाज थिंकिंग लाइक एक जगह मुझे एक चीज़ करनी होती है पर मैं दूसरी करती हूँ. आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट हैव ऑल्सो डन दिस क्योंकि हम मीटिंग्स में कितने वर्जन्स होते हैं हमारी खुद की. इट्स लाइक एक वर्जन होता है एक्चुअल वाला जो सोच रहा होता है यार ये ईमेल में हो नहीं सकती थी क्या. और एक प्रोफेशनल वर्जन ऐसा होता है. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर. हाउ मेनी माइट हैव लाइक इफ योर मैनेजर टेल्स कि क्या चल रहा है तो विल बी लाइक ओ नथिंग आई गेट द पॉइंट बट देन इन इनसाइड यार अभी बस ये मीटिंग एंड ही कर लो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये मीटिंग शीटिंग में. आई नो व्हेन इट्स अ मंडे स्टार्ट ना ये सबके दिमाग में होता है बट इट्स ओके ट्यूजडे कल आ जाएगा और हमें बता देगा कि ब्रो यू नीड टू वर्क ऑन फ्राइडे.

आजकल मैंने एक वर्ड ना कुछ ज्यादा ही सुन लिया है, दैट इज प्रोडक्टिविटी. हर जगह प्रोडक्टिविटी यार, मॉर्निंग रूटीन प्रोडक्टिविटी, नाइट रूटीन प्रोडक्टिविटी, कॉफी भी प्रोडक्टिव बननी चाहिए मेरी मेरी सोच से तो. बिकॉज मतलब अगर मैं घर पे कॉफी पी रही हूँ और उसके साथ कोई गोल अचीव नहीं किया तो क्या कॉफी भी वेस्ट है? आजकल आई थिंक इट्स अ जेंजी ट्रिक टू टेलिंग आई एम सो प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एक नॉर्मल मंडे इवनिंग भी प्रोडक्टिव बन सकती है. यू डोंट हैव टू डू लाइक आज मैंने ये किया, 7 बजे मैं जिम गई और 8 बजे मैंने खाना खाया, 9 बजे आई वॉज डूइंग अ मेडिटेशन एंड अदर टाइम अदर इट गोज़ ऑन. कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी प्रोडक्टिव ही होता है. इंस्टाग्राम इतना मत देखो कि प्रोडक्टिविटी कैसे बनने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाए. तो इतना टाइम सोचने से अच्छा इज़ लाइक जस्ट चिल एंड आराम से गाने सुनो ना.

0: किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: ओ मैं तो देख देख शीशा शर्मंदी फिरूं सो मैं तो देख देख शीशा शर्मंदी फिरूं सो देख देख
2: आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं उसकी शादी हो रही है।

आई नो आई नो, आप अभी पालकी में तो नहीं चल रहे हैं, अपने गाड़ी में कुछ I-65 I-35 कोई रोड में घर ऐसे जा रहे हो। लाइक यार दिन खत्म हो गया, आप बस घर जाओ, अच्छे से डिनर कर लो और सो जाओ। बट पहला रिएक्शन अगर मैं डैलिस की बात करूँ तो डैलिस इतना लंबा क्यों है? अगर कोई मुझे बोले कि मैं डैलिस आ रहा हूँ तो द फर्स्ट थिंग आई आस्क इज, ओ अच्छा डैलिस में कहाँ आ रहे हो? क्योंकि डैलिस में तो 20 सिटी होते हैं, लाइक प्लेनो, फ्रिस्को, इरविंग, कैरलटन, रिचर्डसन, एलन, मैकिनी। अरे फिर कोई बोलेगा अरे तुम तो पास में ही हो भाई। या पास का डेफिनेशन अलग ही होता है, या 30 मिनट ड्राइव लोग ऐसे कैजुअली ले लेते हैं। तो आपकी 30 मिनट ड्राइव हो या 40 मिनट ड्राइव, ऑलवेज बी केयरफुल। अगर आपने कोई कार की एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए, ट्रक के एक्सीडेंट, इफ़ यू स्लिप और फॉल एक्सीडेंट ऑल्सो, यू हैव द बेस्ट अटॉर्नी इन दिस सिटी, दैट इज ओमर ख्वाजा। दे विल फाइट योर केस, दे विल हेल्प यू गेट योर कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी डीलिंग स्ट्रेसफुल लग रहा है, इट्स अ सिंपल वे, जस्ट कनेक्ट टू ओमर ख्वाजा, क्योंकि वो आपके कॉम्पेंसेशन के बिना या आपके केस के जीते बिना दे आर नॉट गोना चार्ज यू। इवन द कंसल्टेंसी कॉल इज ऑल्सो फ्री, सो ऑलवेज गो चेक आउट देयर अटर्नी बाय omar.com, एंड यू कैन इवन कॉल देम एट 4693005046। बट ध्यान रखना अपना।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Documents ya parcel bhejni hai?
8: Haan.
7: Ghar relocate karni hai?
8: Haan.
7: Gaadi bhi transport karna hai?
8: Haan bhai haan.
7: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
10: Hey, tumne kabhi insurance liya?
11: Liya.
10: Kabhi policy samajh bhi aaya?
11: Nahi aaya.
10: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो।
17: जिंदगी एक रंगमंच है
18: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
4: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
19: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
20: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
21: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
20: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
22: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
23: इन प्लेनो।
22: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
19: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
24: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
25: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
24: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
25: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
24: सच में? सब संभालेंगे?
25: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनी या रेडियो।

वैसे तो मुझे लगता है डालिस की सबसे फनी चीज़ ये है कि यहाँ कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कार इज़ बेसिकली योर सेकंड होम ब्रो। हम सब के कार में एक मिनी लाइफ चलती है, एक इमरजेंसी जैकेट, रैंडम रिसिप्स, चार्जर जो कभी काम नहीं करता, एक बॉटल जो पता नहीं कब से ही है, और एक प्लेलिस्ट जो मूड के हिसाब से डिसाइड करती कि आज ड्राइव कैसा होगा। बैड डे, लेट्स गो फॉर अरिजीत। गुड डे, ओल्ड बॉलीवुड हो जाए। कॉन्फिडेंट फील करना है तो अच्छा पंजाबी गाना अभी तो आपने सुना, फॉर अ रीजन। और जब लाइफ थोड़ी कंफ्यूजिंग हो ना, बस गाड़ी चलाओ और रैंडम सॉन्ग सुनो। बट डोंट वरी, मैं आपके लिए रैंडम गाने नहीं लगाऊंगी, मैं आपके लिए अच्छा वाइबिंग वाला गाना ही लगाऊंगी।

हम बात कर रहे थे अबाउट डैलस बिकॉज दिस इज माई शो. द नेम इज दिल से डैलस विथ स्निग्धा. डैलस यार ना एक दैट इज अ डिफरेंट इंटरेस्टिंग मिक्स होती है मुझे. एक तरफ टेक्सिस का पूरा काउबॉय वाइब और दूसरी तरफ देसी आंटी इज डिस्कसिंग विच इंडियन स्टोर हैज बेटर आटा. डू यू गाइज नो कौन सी स्टोर है जहाँ हमें अच्छा आटा मिलता है? आई कैन टेल यू दैट इज इंडिया बाजार. अभी मैं बात कर रही थी डैलस इज वन साइड ऑफ काउबॉयज एंड अदर साइड ऑफ हमारे देसी खाना एंड एवरीथिंग. सो इफ यू आर स्टेइंग इन फोर्ट वर्थ एंड इफ यू फील लाइक यार मैं ग्रॉसरीज कहाँ से लूँ, आटा कहाँ से अच्छा मिलेगा, इट्स नन अदर देन इंडिया बाजार. दे हैव ओपनड अप इन फोर्ट वर्थ एंड एवरीबडी पीपल हु एवर आर लिविंग नियर केलर, हर्स्ट या हैसलेट. एंड आई हैव अ गिव अवे, इट्स अ हैम्पर. ये गिव अवे के लिए द क्वेश्चन इज, अभी मैंने जो गाना बजाया था नशे से चढ़ गई, इसकी सिंगर कौन है? डोंट थिंक द सिंगर ओनली सिंग सैड सॉन्ग्स, सिंगर ऐसे वाले वाइब के गाने भी गाते हैं. माई फिफ्थ कॉलर वुड बी द विनर. तो कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो पर 972-235-5555 पर एंड हियर यू गो फॉर योर नेक्स्ट सॉन्ग गाइस.

listening to Dil Se Dallas with Snigdha on Phonesia 104.9. So, हम बात कर रहे थे about Dallas Diaries. Not only about Dallas Diaries, मुझे पता है बहुत सारे लोग Dallas इसीलिए आते हैं दूसरे स्टेट से. अच्छा लगता है कि अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, या बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे देसी, you have all the देसी things you need, जो चाहिए चाय पत्ते के साथ बिरयानी तक. सो यू गेट एवरी थिंग इन डैलस एंड यू मूव टू डैलस इसीलिए, या द घर इज ऑल्सो बिगर हियर कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. बट वेन यू टेक अ होम यू सडनली बिकम लाइक द होम का, यू बिकम द लाइक आई टी सपोर्ट, लाइक अ ड्राइवर, प्लानर, अपॉइंटमेंट मैनेजर, रिपेयर पर्सन, वेदर एक्सपर्ट, और कभी कभी आप ही घर का आई टी सपोर्ट होते हो. पेरेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर स्लो क्यों चल रहा है, टी वी क्यों अच्छे से नहीं चल रहा है, और आपका आंसर मुझे नहीं पता. फिर भी आप 45 मिनट्स बाद आप ही फिक्स करते हो ये. दैट इज द अब्रॉड लाइफ की हिडन लाइफ. इट्स नथिंग बट अनऑफिशियल टेक सपोर्ट. पर ऑनेस्टली शायद यही छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं. यहाँ हर किसी की एक स्टोरी है, किसी का फर्स्ट अपार्टमेंट, किसी का फर्स्ट जॉब, किसी की फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस. Do you remember the snow experience? I think it was last year. Even this year it was snowing, but not so much as it was last year. So like that, oh, Dallas is also snowing. कोई और ही स्टेट नहीं, हमारी डैलस भी स्नो करती है जी. एंड समवेयर बिटवीन ऑल दिस डैलस स्लोली बिकम्स होम, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट डैलस. सो रहिए डैलस में, अच्छा खाना खाइए, अच्छे घर लीजिए, और नेवर एवर मिस योर होम कंट्री, बिकॉज डैलस नेवर अलाउज यू टू मिस योर होम कंट्री.

भूलिए मत अपने टैक्सेस को। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज़ ब्रॉट यू बाय एजे फिनटैक्स। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म है यूएस में। ये हमें अपने फाइनेंशियल सर्विसेज इनोवेटिव वे में बताते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हो या आपकी बिजनेस चल रही है, टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड। अगर आपको टैक्स में कोई इशू हो रही है या यू नीड सम असिस्टेंस, तो आप ज़रूर देखिएगा एजी फिनटैक्स। यू कैन कॉल देम ऑन 4699429888 और नहीं तो आप उनकी वेबसाइट भी विजिट करते सकते हैं agfintax.com पे। टैक्स भरो अच्छे से एंड हैव एन इनोवेटिव आइडियाज़। ये हमारे लिए मदद भी करेंगे एंड देर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी इन यूएस। सो यू गाइज मस्ट एंड गो थ्रू एजी फिनटैक्स। थैंक यू।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
3: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
6: इट्स लॉसन।
5: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
6: इट्स लॉसन।
5: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
7: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
8: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah. It's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
9: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

It's almost 8:38, almost to 8:40 PM होने वाले 2 मिनट में. So this is the time जहाँ हम सोचते it's dinner time guys. आज हेल्थी खाऊंगा. फिर थोड़ी देर बाद सोचते कुछ भी चलेगा, बस कुछ और ही बना दो थोड़ी देर में. It's so confusing, right? हमारे काम हो जाता है, हम घर आते. इफ़ यू हैव योर वाइफ्स, योर गर्ल फ्रेंड्स, वो लोग आपके लिए कुक करते होंगे. बट आई कैन टेल यू इवन मोर फन प्लेस टू ईट, दैट इज़ फन पिज्ज़ा किचन, वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. अगर आप वेजिटेरियन हो, वी हैव आचारी पनीर पैक्ड विथ अच्छा टैंगी आचारी वाला पनीर विथ अ सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग एंड स्पाइस मैजिक. एंड फॉर मीट लवर्स दैट्स तंदूरी चिकन. यार हमारे देसियों खाने का, like you know, even like tandoori.

आचारी, क्या मस्त नाम रखते हैं। सो इफ यू आर क्रेविंग फॉर अ नाइस देसी ट्विस्ट वाला पिज्ज़ा, अगर आप डोमिनोज, पापा जॉन्स से बोर हो चुके हैं, सो गो टू फन पिज्ज़ा किचन। इट इज़ लोकेटेड इन फ्रिस्को, और खाइए अच्छी आचारी पनीर और तंदूरी चिकन वाली पिज्ज़ा। देयर इज इवन अ गिव अवे फॉर दिस। अगर आपको ये गिव अवे चाहिए, माई सेकेंड कॉलर वुड बी द विनर फॉर इट, तो कॉल कीजिए। द गिव अवे इज $10 गिफ्ट कार्ड ऑन फन पिज्ज़ा किचन। कॉल टू द स्टूडियो ऑन 972-235-5555 पर एंड विन द गिव अवे गाइस।

0: रखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया
1: लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया।

That was Kala Chashma from the movie Bar Bar Dekho. मैं सोच रही थी अभी मैं क्या बात करूँ. So I was just thinking like देसी decoder, it's nothing. बस ऐसी हंसी मजाक की बातें guys. मतलब वो देसी habits जो हम explain नहीं कर सकते, बस carry करते हैं. जैसे घर में अगर कोई guest आने वाला है तो cleaning शुरू नहीं होती है, emergency operation शुरू हो जाती है. एक बंदा sofa के cushions ठीक कर रहा होता है, एक बंदा kitchen में random चीज़ें hide कर रहा है, और मम्मी का favorite dialogue, बस थोड़ा सा घर सेट करना, थोड़ा सा. मैडम ये तो फुल रिनोवेशन चल रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिलेट टू दिस? क्योंकि हम सब यही करते हैं. दिस इज द देसी हैबिट वी कैन नेवर गेट अपार्ट. अगर घर पे कोई आ रहा है तो घर फ्रॉम टॉप टू बॉटम चकाचक तो दिखना ही चाहिए. नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू गाइस.

पता है हमारे देसियों का और एक टैलेंट क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं. लाइक एक सिंपल सा सवाल, यहाँ वेदर कैसी है, और हमारी मम्मियाँ बोलती है अगर लाइक दे कमिंग टू यूएस फ्रॉम इंडिया टू मीट अस एंड टू जस्ट सी चिल इन यूएस, बोलते हैं अच्छा है लेकिन इंडिया जैसे थोड़ी ना है. अगर हम बोलते कि खाना कैसा है, हाँ अच्छा है पर घर जैसे टेस्ट नहीं आती है ना, मैं तो इससे भी अच्छा ही बना लेती, इतना ऑयल डालते, इतना ये वो ये तू तू मैं तो हम करते ही रहते. ठीक है, लेकिन बचपन वाले दिन ना अलग थे. शाम में हम सब नॉस्टैल्जिया के साथ परमानेंट मेम्बर्स होते थे. हम नई मेमोरीज भी बना रहे होते हैं लेकिन पुरानी वाली मेमोरीज को ना वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं. चलिए एक ऐसे ही गाने को थोड़ा सा और पुराने मोमेंट्स को भी हम याद करते हुए सुनेंगे हमारे दिलजीत दोसांझ की सांग.

वॉज अ नाइस देसी ट्विस्ट वाला दिलजीत दोसांझ एक्स सिया. अगर आप दिलजीत दोसांझ के फैन हो यू शुड एंड मस्ट हैव नो हस हस. इट्स अ नाइस पंजाबी बीट सॉन्ग विद अ देसी एंड अ डीजे मिक्स. सो कीपिंग योर शाम बिकॉज इट्स ऑलरेडी गोना बी 9. सो लेट मी प्ले अ नाइस फील गुड ये शाम मस्तानी आपके लिए हो जाए.

दैट वॉज ये श्याम मस्तानी. किशोर कुमार जी के गाने की एक अलग ही मैजिक है. आप कभी भी हो, लाइक कहीं भी हो, लाइक कभी भी, वेन एवर यू से यू लिसन टू दिस ऑल यू फील लाइक यार ये तो मुझे पता है. यू डोंट हैव टू बी लाइक ओल्ड जनरेशन टू नो दिस गाना, ओके? क्योंकि मैं भी ओल्ड जनरेशन नहीं हूँ. आई एम नॉट अ 90s किड, मैं भी 20s की ही किड हूँ और मुझे ये गाना पता है. चाहिए आप डैलस में हो या न्यूयॉर्क में या अपने बेडरूम में लॉन्ड्री फोल्ड कर रहे हो, गाना तो आपको अच्छा ही लगा होगा. एंड यू माइट फील अरे यार कितना दिन हो गया ये गाना सुन के. एंड द नेक्स्ट ट्रैक इज रेडी फ्रॉम द मूवी क्रूक, मेरे बिना, टू मेक यू फील यू अ लिटिल रोमांटिक एंड लिटिल काम एंड अ लिटिल सोलफुल म्यूजिक.

0: That was a beautiful song. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया. म्यूजिक डायरेक्टर आतिफ असलाम फ्रॉम द मूवी रेस एंड द हीरो अक्षय खन्ना एंड द हीरोइन बिपाशा बासु एंड सैफ अली खान. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अक्षय खन्ना. अक्षय खन्ना वॉज सर्विंग लुक्स इन दुरंधर एंड दुरंधर के बाद तो आई गेस हुएवर वॉज नॉट अक्षय खन्नाज फैन आर नाउ अक्षय खन्नाज फैन बिकॉज ऑफ द डांस ही डिड एंड द लुक्स ही हैड. एंड ही हैज हिज न्यू मूवी रिलीज राइट नाउ ऑन Netflix, that is Ikka, and it has been released from July 10th. अगर आपने नहीं देखी हो, it's a nice thriller movie directed by Mr. Siddharth Malhotra. And if you want something thrilling, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे shows तो नहीं आने वाले, क्योंकि मैं तो इतना सर्च करती हूँ कि मैं आज क्या देखूँ, पर अभी तो मेरी लॉकअप का सीजन ही चल रहा है. एंड इट इज़ 9:08 PM, इट इज़ टाइम फॉर डिनर. एंड आपके लिए ये गाना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव अ गिव अवे आफ्टर दिस सॉन्ग.
1: भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की,

अगर चिकन ज़्यादा क्रेव कर रहे हो या वेज भी क्रेव कर रहे हो, चले जाइए रेड हॉट चिली पेपर. इट हैज़ इट्स लोकेशंस इन रिचर्डसन, मैकिनी और एलन में भी. और द गिव अवे क्वेश्चन वाज़, अभी मैंने जो गाना बजाया है वो गाना कौन सी मूवी में है? तो कॉल कीजिए हमारी स्टूडियो पर 9722355555 पर एंड गिव मी द आंसर एंड गेट अ गिव अवे गाइज़.

that was from Sayara. What a movie, guys. Sayara. I just love the movie. Though they did it for the like, it's their first movie. क्या मूवी बनाई है इन्होंने. एंड व्हेन आई थिंक अबाउट दिस मूवी, द थिंग इज इट्स लाइक गेट अवे. लाइक आई नो शी इज नॉट वेल एंड ऑल. जैसे जगह पे वो लेके जाता है, क्या मस्त सी जगह होती है. एंड राइट नाउ हमारे लाइफ और हमारे मॉडर्न लाइफ कल्चर में बस यही होता है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन लाइफ और वो दुनिया जहाँ सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है. बट हम सोचते हैं कि ओ हमने भी ये क्यों नहीं किया. हम कंपैरिजन में लग जाते हैं बिकॉज इंस्टाग्राम पे सबका वीकेंड अमेजिंग होता है. ब्यूटीफुल कॉफ़ी, ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल आउटफिट. और रियलिटी में फ़ोटो लेने के बाद वही पर्सन बोलता है, चलो यार अब घर, बहुत थक गया मैं, बस किया क्या है वहाँ पे, बस फोटोज लेना. सजेस्ट फॉर एवरीबडी, फोटोज तो लो भाई, बट वेन यू गो टू अ प्लेस एंजॉय द प्लेस ऑल्सो. हियर इज द नेक्स्ट ट्रैक रेडी फॉर यू गाइज.

0: इट्स 9:23 PM ऑलमोस्ट. लेकिन ना मैं ऐसे सोच रही थी कि व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, इट्स नथिंग बट जहाँ हम थोड़े उन चीज़ों के बारे में सोचते, सोशल मीडिया ने हमारी जनरेशन को अजीब ही प्रॉब्लम दे दी. लाइक हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपने बिहाइंड द सीन्स लाइफ कंपेयर करते रहते हैं. आप सच्ची सच्ची बोलो, लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस. ओके, यू सी समथिंग एंड यू फील लाइक यार काश मैं भी ऐसे करती, मैं भी ये पहनती, मैं भी वो करती. एक पिक्चर, एक पर्सन को देखो, न्यू सिटी, न्यू रेस्टोरेंट, परफेक्ट आउटफिट, ब्यूटीफुल सनसेट. और हम सब सोचते यार सबकी लाइफ इंटरेस्टिंग है भाई, फोटो के पीछे भी कोई 47 ज़रूर डिफरेंट एंगल्स ट्राई करे होंगे. लाइक सनसेट ब्यूटीफुल होना, एक सनसेट को आप आँखों से देखो या फोटो में खींचो, इट इज़ नॉट गोना गेट यू एनी डिफरेंस अंटिल यू फील इन इट. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप इट विद इन योर सेल्फ एंड फील योर सेल्फ, और आप वो चीज़ में एंजॉय करो, ना कि आपकी सोशल मीडिया या आपका फ़ोन.
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब. ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन, और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी हैं. तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके.

एडल्टिंग का सबसे फनी पार्ट ये है, हम बचपन में सोचते थे कि बड़े लोगों के पास सारे आंसर्स होते हैं, फिर बड़े हुए और पता चला सब गूगल ही कर रहे होते हैं, मतलब नॉट लाइफ एडवाइस और समथिंग सीरियस, मैं तो हंसी मजाक में बोल रही हूँ गाइस, सब लेट इट बी रेसिपीज गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, टैक्स के बारे में करना है गूगल पे पहले पढ़ो, उसके बाद आप किसी ऑफिस में जाके सब पता कर लेना, अगर हमारे प्लांट के पत्ते लाल हो रहे या पीले हो रहे तो गूगल करो, लाइफ एडवाइस भी आजकल लोग चैट जीपीटी में देखते हैं, लाइक चैट जीपीटी व्हाई डू आई फील लोनली टुडे, चैट जीपीटी व्हाई डू आई फील दिस दैट, एंड कोई 25 पे करियर चेंज कर रहा है, कोई 35 पे नई बिगिनिंग, कोई पहली बार घर ले रहा है और कोई बस सीख रहा है कि अपने लिए बस टाइम कैसे ही कैसे निकल ही जाए, कंपैरिजन का प्रेशर कम करना चाहिए क्योंकि सबका टाइमलाइन अलग होता है, एक प्लांट भी हर सीजन में स्पीड से ग्रो थोड़ी ना होता है, इट इट टेक्स इट्स टाइम, सो एवरीथिंग टेक्स इट्स टाइम, इतना ज़्यादा मत सोचो गाइज, बट फनीशिया में गाने ज़रूर सुनो।

इट्स 9:43 PM और मुझे लगता है रात का ये टाइम ना थोड़ा अलग ही होता है. दिन में हम सब किसी ना किसी रोल में होते हैं, लाइक ऑफिस में एम्प्लॉय, घर पे रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए फैमिली मेम्बर. लेकिन रात को जब थोड़ा सा शांत हो जाता है ना, तब बस हम होते हैं. हाय, मैं हूँ स्निग्धा और आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनी शो 104.9. ये हमारा लास्ट सेगमेंट है और हम बात करेंगे दिल वाले बातें. वैसे मुझे लगता है ना, हम सबको फ़ोन में एक फोल्डर होता है जो बहुत स्पेशल होता है फ़ोटोज़ का, जहाँ रैंडम पिक्चर्स होते हैं, परफेक्ट सेल्फीज़ नहीं, बस रैंडम मोमेंट्स, एक कॉफ़ी कप, एयरपोर्ट का व्यू, किसी फ्रेंड के घर के डिनर के सीन, या एक फ़नी सा स्क्रीनशॉट, या एक ओल्ड फोटो ऑफ आर फैमिली. फोटोज जो शायद उस मोमेंट में इम्पॉर्टेंट नहीं लगते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है, ओ या ये तो वो मेमोरी है. लाइफ भी कुछ ऐसी है, हम सोचते हैं बड़े मोमेंट्स याद रखेंगे, लाइक अ फर्स्ट जॉब और अ बिग अचीवमेंट, लेकिन अक्सर जो यादें होती है छोटे छोटे में इतने सारे खुशी होते हैं. लाइक इट माइट बी लाइक अ स्मॉल थिंग, लाइक पापा का रैंडम फोन कॉल, मम्मी का वही सेम सवाल, खाना खा लिया किसी दोस्त का बिना प्लान के मिल जाना, या एक नॉर्मल शाम जो बाद में स्पेशल लगती है. शायद घर भी इसी तरह बनता है एक छोटी की मेमोरी के साथ. अगला नंबर आपके लिए.

ओके डैलस, अब वो टाइम आ गया है जहाँ मुझे आपसे गुड बाय कहना पड़ेगा। 3 घंटे पहले जब हम मिले थे, मंडे का मूड थोड़ा हैवी था, ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक था, रैंडम थॉट्स। बस शायद थोड़ा लाइटर फील हुआ होगा आपको मेरी शो सुन के। ये तो म्यूज़िक और कॉन्वर्जेशन का मैजिक है। समटाइम्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस उनके साथ बैठे थोड़ा ईजी हो जाता है। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर इवनिंग विथ मी। मैं हूँ स्निग्धा और आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विथ स्निग्धा ऑन फनीशा 104.9 FM पर। हम फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ और वही डैलस वाली फीलिंग के साथ। ड्राइव सेफ, अपना ख्याल रखिए और हाँ, घर पहुंच के डिनर कर लीजिए, बिकॉज कुछ चीज़ें कभी कभी चेंज नहीं होती। गुड नाइट डैलस, दिस इज स्निग्धा साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट 2 ट्रैक्स आर रेडी फॉर यू।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कमरा।
1: वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल।
2: बोरिंग दिनचर्या में
3: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग। This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KDCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
4: Official tax and finance partner, AG FinTax.
3: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: In association with Passion Health Primary Care.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
5: Hey Dallas still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group Nah it's time to level up If you got talent we got you Whether you sing dance rap do stand up play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए।
1: Your favorite music on your favorite radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरियोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धर्माल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बदलाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो ये गिरा लगा रखते हो, भूख लगी है लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगी तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

0: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
1: का हिस्सा बना लीजिए, स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, डीक्लटर योर डेस्क, डीक्लटर योर माइंड। सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि थॉट्स और दिमाग की भी जरूरी है। सो क्लीन स्पेस, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन वाइब्स ओनली, यही है फनएशिया रेडियो का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को।

0: जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक फन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई, टल्ली हो गई। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे, बाय गॉड।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुके थे।

0: it.
1: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

एक्शन। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा ना।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: करते रहते हैं।
1: Bringing the community together. Fun Asia Radio 104.9 FM.

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: डबल हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
7: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: So, ruko jara, sabar karo.
2: Agla gana, full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Panacea.

0: What is the law?
1: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The Travel Experts. Lawson Travel.
2: जिंदगी एक रंगमंच है
3: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
4: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
10: Ladies and gentlemen, welcome to our Tuesday morning show. It's the 14th of July today. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chaand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम.

0: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
1: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
0: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338, दैट्स 817-786-3338।
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
8: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
11: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
9: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: 7 or visit them at thewealthtactic.com.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
1: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
5: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
6: Foodistan in Aubrey. Everything desi, one place, one vibe.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
14: Queen Victoria ki tarah kaise dikh sakti hain aap?
15: Aap to waise hi lagengi. मलिका तिलफरिया.

0: पॉलिसी समझ भी आया?
1: नहीं आया।
0: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
0: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में? सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Early on the morning of the 14th of July 1970, the Young Lords, a predominantly Puerto Rican group of community activists in New York City, stormed the Lincoln Hospital in South Bronx and barricaded themselves inside. The Young Lords claimed the hospital as their own, placing a Puerto Rican flag on the roof and flying signs from its windows reading, "Welcome to the People's Hospital." It was the beginning of a 12-hour-long occupation in protest of the hospital's poor care conditions. And it was the world's last telegram that was sent as India's state-run telecommunication company ended. The world's last telegram on today's date in 2013. NASA's New Horizons probe completes a flyby of Pluto on today's date in 2015. And then, ladies and gentlemen, 10 years ago on today's date, thousands gathered along the seafront of Nice in France to celebrate Bastille Day, the country's independence holiday. And the mood turned from joy to horror when a white truck barreled through a pedestrian-filled closed street. In the end, 86 were dead, including 10 children, and over 400 spectators were left injured. While fireworks shot into the sky for 30,000 spectators, Mohamed Lawej Bouel, a 31-year-old Tunisian man who had been planning his attack for a year, drove past the festivities several times in this truck that he'd rented just 3 days prior. Shortly after the show concluded, he put his plan into motion, jumped the curb with the truck, zigzagging through the crowd at 60 miles per hour, deliberately running people over. And those who were
1: celebrating... मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
3: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
7: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
9: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा,
9: लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
14: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम।
1: My name is Amara Jamani and I'm from Sanada Inc. Today I'm here to discuss about umbrella insurance. Why umbrella insurance matters? A serious accident can exceed the limits of your auto or homeowner's insurance. That's where umbrella insurance comes in. Umbrella policies provide additional liability protection that can help protect savings, investment, future income, personal assets. For many families, umbrella coverage can be surprisingly affordable while providing millions in additional protection. To get more details, please contact me or my team at 972-863-7772, 972-863-7772. Thank you.

0: All right, ladies and gentlemen, we're supposed to be at 95. That is the average for this time of the year. Yesterday, we touched 90 and very close to that today. So relatively cooler as the kick at 2 p.m. today, the ninth and last match here in Dallas, a semi-final at 2 p.m. today, France and Spain battling it out. And of course, it'll be England and Argentina tomorrow in Atlanta. I have heard there are some tickets that have been discounted for today's match, discounted $500 almost, but do check them out and see if you can attend this match. It is an experience to attend a World Cup match, and it's happening right here in your town in Dallas. I'll see you all tomorrow at 7 o'clock. It is 10 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
11: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
12: इट्स लॉसन।
11: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
12: इट्स लॉसन।
11: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
13: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458, द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
14: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
15: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
14: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
16: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
17: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free Clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
18: अगर
12: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
17: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
20: इतना सब और प्राइस?
17: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
21: मैं हीरो।
22: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फनीजिया रेडियो 104.9 FM ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। इट इज गपशप गली विथ मी टू। और शो को आगे बढ़ाएं उसके पहले शुक्रिया तो कहते हैं शबनम जी को। यस, वंडरफुल शो दैट शी ब्रिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस एवरी weekday, Monday to Friday, from 7 to 10 in the mornings that we get the beautiful dose of the music that she plays for us, all the information that she brings for us, world news that she brings for all of us. So yes, thank you to Shabnam ji. And let's begin. Spotty showers or storms jo possible hai aaj phir ek bar, and the higher chance is to the south of the metroplex. We'll bring that and much more. This is Gapshap Gali with me too.

एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन वॉज फ्रॉम मैं वापस आऊंगा. मैं आ गई हूँ वापस और 12:30 बजे तक आपके साथ हूँ राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. किशमिश जो चीज़ है ना वो गज़ब की चीज़ है. जब वो प्रसाद में मिलता है ना, किशमिश और बादाम कई बार जो मिलता है ना, आई लव दैट कॉम्बिनेशन. और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे ना, तब ये बादाम और किशमिश हम रेगुलरली खाया करते थे. अब बड़े होते होते ना ये चीज़ें हम थोड़ा कम करने लगे हैं, थोड़ा अपना कभी कभी जब वो ख्याल नहीं रखते हैं तो जी हाँ ऐसे ही होता है. लेकिन वो बचपन के वो दिन याद आ गए, तो शायद मे बी वंस अगेन आई विल गेट बैक इन टू द रूटीन ऑफ हैविंग बादाम एंड किशमिश. यार इट यूज टू बी सच फन ट्रीट इन द मॉर्निंग्स. एंड यू आर ट्यून्ड इन टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. तो केवल किशमिश की ऐसी नॉस्टैल्जिक बात नहीं करके एक और फन फैक्ट आपको बताती हूँ यहाँ पर. मुझे फन फैक्ट से याद आया कि हमारी जो आजे हैं मधुलिका, शी ब्रिंग्स सो मैनी फन फैक्ट्स. या इट इज़ ऑल अबाउट यू नो द फन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रेडियो एंड द इंफॉर्मेटिव एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रेडियो दैट ब्रिंग्स यू दिस इंफॉर्मेशन. कि रोमन एंशंट रोमन कल्चर में अपेरेंटली ये जो किशमिश होता था ना, ये यूज़ किया जाता था एज करेंसी. जी हाँ, स्लेव्स को खरीदने के लिए ये किशमिश यूज़ किया जाता था एज करेंसी, बार्टर एक्सचेंज फॉर अ स्लेव. कैन यू इमेजिन दैट सीरियसली?

0: एकदम चकाचक प्रोसेस के लिए, यानी कि एकदम स्ट्रेस फ्री प्रोसेस के लिए ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ जरूर कनेक्ट करें. वेल, आई डू वांट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट. जो अगर आपको नहीं है तो बहुत ताज्जुब होगा. दे हैव बीन इन बिजनेस सिंस 1998, क्लोज टू 30 ईयर्स नाउ. और यहाँ पे ये बता दें कि भाई फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो आपके लिए, अगर आपका ये सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते हो, या यू नो द refinance part of it, anything to do with loans and mortgages, they are definitely here to cover you all. From VA loans to refinancing options, from jumbo programs to 15-year terms, Dream Home Mortgage is more than just a Dallas mortgage company. They are a nationwide partner committed to timely closings and stress-free service. Plano-based mortgage brokers aap logo ke liye, get in touch with Mr. Hussain Panjwani and his team. Aur yahan pe ye भी कहना चाहती हूँ कि हर मंडे को 10:30 बजे मेरे शो पे मिस्टर हुसैन पंजवानी, द सीईओ ऑफ ड्रीम होम मॉर्गेज, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ होम ड्रीम होम मॉर्गेज, वो आते हैं और बहुत सारे टिप्स एंड एडवाइसेस, बड़े यूजफुल जो टिप्स एंड एडवाइसेस हैं वो लेकर आते हैं. सो ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम इज द वेबसाइट. 9722455626 इज द नंबर टू कॉल. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
5: इन प्लेनो.
4: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ.
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं.
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं.
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं.
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 9726188555. AG Fintax. Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
18: Tracks that put you on the right track.

It is Gupshup Gali with me too. हमारे गपशप में फीफा सेगमेंट आता है एट द एंड विच इज बिटवीन 12 to 12:30. कंसिडरिंग कि आज गेम है तो वेदर तो भाई डालस का बताना ही पड़ेगा क्योंकि डालस स्टेडियम में गेम है एंड दिस फाइनल वर्ल्ड कप मैच सेमी फाइनल दैट वी आर हैविंग हियर इन डालस स्टेडियम इज द लास्ट वन दैट वी आर हैविंग इन डालस स्टेडियम. इट बेटर बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस कंसिडरिंग कि काफ़ी कल बारिश हुई है. आज हमारा स्टार्ट जो है काफ़ी ड्राई हुआ है. टेम्परेचर्स इन द 70s दैट वी सॉ. And yes, if you are heading to the game, expect dry conditions on the way with a chance for isolated storms afterwards. Aur isiliye prepared jaye aap, shower and thunderstorm activity will be better south of Dallas-Fort Worth Metroplex today afternoon. और वेंसडे और थर्सडे की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर्स हमारे वो 90 मार्क तो पार करेंगे ही. दे विल इट विल क्रॉस दैट विथ मोर चांसेस ऑफ स्टॉर्म्स दैट वी विल सी इन द कमिंग डेज. दैट्स द फोरकास्ट फॉर यू राइट नाउ. लेट्स सी व्हाट द टेम्परेचर इज फॉर अस राइट हियर इन मेकिनी. इट इज 81 डिग्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन. और आज का हाई हमारा कुछ 90 तक पहुंचना चाहिए एंड द लेटर टुनाइट इट विल बी अराउंड व्हाट आई सी इज अराउंड 72ish या लो 70s में रहने वाला है. कल हमारा टेम्परेचर अगेन वही 90 के आसपास ही हवा करेगा विद लो ऑफ 72 अगेन. एंड थर्सडे को डिग्री टू वन और टू डिग्री दैट वी विल सी द राइज इन टेम्परेचर्स. दैट्स व्हाट इज इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस राइट हियर इन डैलस फोर्ट वर्थ एरिया. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. वेदर अपडेट के बाद इस गाने को थोड़ा फील करें. कविता सेठ एंड श्रेया घोषाल, व्हाट अ कॉम्बो इन दिस वन सॉन्ग. अमित त्रिवेदी को जाता है क्रेडिट फॉर दिस ब्यूटिफुल टोनल क्वालिटीज दैट ही मैच्ड इन दिस वन सॉन्ग.

एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग, होपफुली यू एंजॉयड इट एज वेल. दिस इज गपशप गली विथ मीठू. जो पसंद है वो लगाती हूँ और यही उम्मीद आपसे भी करती हूँ कि आप जो अपनी पसंद भेजेंगे वी विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट वी प्लेड. कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है लेकिन रेस्ट श्योर हम ज़रूर लगाते हैं आपका वो गाना. वैसे कुछ कुछ चीज़ों के लिए ना इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए एंड दैट इज़ इफ इट इज़ टू डू विथ योर टैक्स प्लानिंग. क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि एजी फिनटैक्स आपकी मतलब एंड टू एंड मदद कर सकते हैं तो क्यों ना आप उनके फाइनेंशियल सर्विसेज और टैक्स प्लानिंग का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं. डोंट लीव योर टैक्सेस टू बी डन एट द लास्ट मिनट. केयरफुल टैक्स प्लानिंग कैन सेव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैसल्स और इसके लिए पहले से ही तैयारियां करनी होती हैं. और ये तो सिर्फ मैं एक एस्पेक्ट बोल रही हूँ एजी फिनटैक्स का. मिस्टर अनिल गांधी और उनकी टीम आपको बहुत सारी और चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो टैक्स फाइलिंग और कंप्लाइंस की बात हो, वर्चुअल CFO सर्विसेज की बात हो, डायनामिक बुक कीपिंग की बात हो, R&D टैक्स क्रेडिट्स की बात हो या फिर वेल्थ मैनेजमेंट. दे कैन हेल्प यू इन ऑल रिगार्ड्स एंड मच मोर. ज़रूर कनेक्ट करें इनके साथ. दे आर ट्रस्टेड, दे आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड दे कैन गेट यू रेडी फॉर योर फ्यूचर एंड ए ब्राइट वन, माइट आई ऐड दैट. 4699 4298888 is that number. agfintax.com is the website to go. Diving into this next track, or female composers bade kam milte hain. Sameera Kopikar usme se ek bahut hi shandar naam. So enjoy her music composition right here on Funnature Radio 104.9 FM. This is Gapshap Gali with me too.

0: And that, ladies and gentlemen, was a composition of Sameera Kopikar. And मुझे ना समीरा मेरी एक फ्रेंड होती थी बचपन में जिसको मैं कहीं में आई कुडंट ट्रेस हर ऑन सोशल मीडिया. और समीरा दुग्गल उसका नाम होता था और उसका घर का नाम था डॉली. और उससे मुझे गोविंदा का वो याद आ गया, अरे डॉली डॉली डॉली डॉली डॉली डॉली. कैसे कनेक्ट करते हैं नाम, सीरियसली. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM.
1: Moments don't fade, they echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting, rerouting.
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
6: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
7: Your new destination has arrived.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
9: उमर ख्वाजा.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
15: Tracks that put you on the right track.

From the movie Krish, ladies and gentlemen, that you heard that song and वो superhero का जो एक angle था इसमें, first probably modern superhero हमें मिले इस Krish character के साथ, right? Talking about Hollywood, ladies and gentlemen, because this is the segment which is this day in cinema history. मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट X-Men. जी हाँ, जो एग्जैक्टली 26 ईयर्स पहले आज के दिन रिलीज हुआ था, एंड दैट मॉडर्न सुपर हीरो एरा वॉज ऑफिशियली बॉर्न इन हॉलीवुड. जब मार्वल्स ने निकाला ये म्यूटेंट स्क्वाड, जो कि बिग स्क्रीन पे आया, जो डेब्यू किया इस दिन पे, जिस फिल्म ने इन US, और इट एब्सोल्युटली चेंज द ब्लू प्रिंट ऑफ हॉलीवुड सिनेमा फॉर एवर. ह्यूग जैकमैन जो है, उन्होंने एज लोगन स्लैश वुल्वरीन के कैरेक्टर में वो पहली बार रसे नजर आया अलॉन्ग साइड पैट्रिक स्टुअर्ट एंड अदर्स. और ये फिल्म मैसिव हिट रहा एट द बॉक्स ऑफिस, एंड इट प्रूव टू मेजर स्टूडियोज दैट ऑडियंसेस वॉन्टेड कॉमिक बुक अडेप्टेशंस. तो ये कहा जा सकता है इन अ वे कि आज के दिन जो ये एक्समैन रिलीज हुई थी इन 2000, इट वॉज फॉर दिस फिल्म की अब जो ये मल्टी बिलियन डॉलर सुपर हीरो फिल्म जो हम देखते हैं, उसके कारण जो ये एक शुरू हुआ एक रिवाज. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. तो अगर 14 जुलाई को एक्समैन रिलीज हुई थी तो बॉलीवुड में क्या फिल्म रही होगी, कैन यू इवन इमेजिन. एंड नो, 2006 में मैं लेकर जाने वाली हूँ. और ऑफ कोर्स ये चीज़ें कहाँ पता होती है, लेकिन मुझे ना ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करता है कि आज के दिन something special happened and we just pass it as a normal regular day, lekin kisi ki life mein kisi jagah par wo bahut important day hota hai. As for Rohit Shetty, it definitely was a big day kyunki Golmaal franchise ka Shri Ganesh aaj ke din hua tha on 14th of July, ladies and gentlemen, and guess what, it released on the same day. I think it was the same time period. It was a release ड्यूरिंग द टाइम जब क्रिश और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्म्स काफ़ी हिट हुई थी, लेकिन गोलमाल ने भी अपनी एक अच्छी जगह बनाई. अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, रिमी सेन, परेश रावल, ए स्टार स्टडेड कॉम्बो दैट केम इन टू बींग विथ दिस. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गोलमाल फिल्म सीरीज़.

कमिंग ऑफ एज बड़ी कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड इट वाज द फर्स्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स इन द गोलमाल फ्रेंचाइज और बहुत बड़ी हिट हुई. तो मेरे ख्याल से तब जब उन्होंने रिलीज किया होगा तब सोचा नहीं होगा कि ये इतना लंबा चलेगा इसका फ्रेंचाइज. एंड यस इट डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस एज वी ऑल नो. एक ये जो अगली फिल्म का गाना मैं लगाने वाली हूँ इट डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस बट ओवर द टाइम एक कल्ट क्लासिक डेफिनेटली बन चुका है एंड दैट इज द रणबीर कपूर कैटरीना कैफ फिल्म जग्गा जासूस जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2017. अनुराग बासु की डायरेक्टोरियल एक विजुअल स्पेक्टिकल थी ये फिल्म और एक एक्सपेरिमेंटल म्यूजिकल एडवेंचर कॉमेडी एक ये जो पहली बार इंडिया में बना था. इसमें 29 सॉन्ग्स वर कंपोज बाय प्रीतम और ये अपने आप में एक मैसिव सिनेमैटिक रिस्क था. लेकिन इवन दो जो हमारे बॉक्स ऑफिस पे ओपिनियन काफ़ी स्प्लिट रही लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग थी लेकिन यू हैव टू हैव द क्या कहना चाहिए द यू नो सॉर्ट ऑफ दैट फील टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट विम्सिकल स्टोरी टेलिंग. तो अगर आपने अगर वो देखी है यू नो व्हाट आई मीन हियर राइट. तो बस ये आगे जो फिल्म है ये आगे चलते इट बिकेम अ कल्ट क्लासिक इसमें कोई शक नहीं है और इस फिल्म के गाने भी जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं

ये जो देसी पंच मिलता है ना हमें अपने गानों में, वो कुछ अलग ही बात होती है. लेकिन वक्त के साथ ये भी बदला है, यू नो, द इंस्ट्रूमेंटेशन, द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड, द वे द सॉन्ग्स आर बीइंग कंपोज, कितना कुछ बदला है. लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि एवरीडे लाइफ हार्डली हमें कुछ चेंज नज़र आता है, कि मतलब कल और आज में कुछ खास फर्क नहीं है, अदर देन द लिटिल थिंग्स, यू नो. तो जब हम यू नो रुक के कुछ पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ आता है कि एक्चुअली लॉट हैज चेंज्ड हमारे खुद में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास के लोगों में, दुनिया में. एंड इट टेल्स अस वन थिंग फॉर श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड मैसिव चेंज इज बाउंड टू हैपन, है ना. चेंज जो है ये तो तय है, ठीक है ना, मतलब कि इसमें कोई शक ही नहीं है हमें, राइट. पर ये चेंज कैसा होगा कोई नहीं जानता. हमारे बदलने से बदलाव आएगा या बदलाव हमें बदल देगा, ये तो वक्त ही बताएगा. ये बदलते वक्त के कारण होगा या हमारे बदलते उसूलों के कारण, क्या ये बदलती हुई टेक्नोलॉजी के कारण होगा या उस टेक्नोलॉजी में डूबते हुए इंसान के कारण. चेंज तो इनएविटेबल है, लेकिन कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. अभी इस वक्त मैं आपको पीछे ले जाने वाली हूँ, और वो बोल रही थी ना कि देसी फ्लेयर जो हमारे गानों में हुआ करता था वो कुछ ऐसा था.

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर।
1: एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द सॉन्ग दैट आई वाज प्लेइंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स बीच में कट गया और मुझे उसका काफी दुख है। एक्चुअली आई वाज एक्साइटेड टू प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू एंड देयरफॉर दैट ग्लिच, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज, यू नो, वो इम्परफेक्शंस में ही परफेक्शन ढूंढना। कितनी बार मेरे शो पे ऐसा हुआ है कि बात करते करते इतने हाथ वाथ हिला के बात कर रही हूँ कि पास में जो बॉटल रखी हुई पानी की वो भी धाड़ से लगा और गिर गया, लेकिन दीज आर द इम्परफेक्शंस दैट मेक इट real, right? तो इसी बात पे let's take you to the song that I intended to play for all of you right here on Funisha Radio 104.9 FM. उसकी भी बात करें कुछ

वॉट परफेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन इन दिस वन. तनिष्क बागची's ओरिजिनल, जो कि जाने जाते हैं फॉर रीमेक्स, उनका ये ओरिजिनल गाना आपने सुना. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ अबाउट द चेंज, द एवोल्यूशन दैट हैज़ हैपेंड ओवर डेकेड्स नाउ, राइट? हर एरा में हमने अपने कुछ चेंज देखा, कुछ एवोल्यूशन देखा, और क्योंकि इसकी बात चल रही है, इट इज़ सो फैसिनेटिंग रियली टू सी हाउ दिस प्लेज आउट इन रियल टाइम बिटवीन जेनरेशंस. हमारे सर्कमस्टांसिस बदलते हैं तो हमारे अडाप्ट करने के तरीके भी बदलते जाते हैं, राइट? मिलेनियल्स ने जिस बदलाव की शुरुआत की, जेंसी अब उसे बिल्कुल एक नए लेवल पर लेकर जा रही है. आप मतलब आप सोच के देखें, अगर वर्क प्लेस एवोल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो मिलेनियल्स वर द रियल पायनियर्स जिन्होंने एक रिजिड 9 to 5 कॉर्पोरेट क्यूबिकल कल्चर को तोड़कर एक अलग ही अपना एक जो बनाया है, दैट फ्लेक्सिबिलिटी दैट दे ट्राई टू ब्रिंग इन. दे फॉट हार्ड फॉर रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, कैजुअल ड्रेस कोड्स, और ये एक जो आइडिया था ना कि यू नो यू शुड एक्चुअली लव योर जॉब, ये मिलेनियल्स के साथ शुरू हुआ. एक्चुअली बेसिकली उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर ग्राइंड किया और उसे चेंज करने की पूरी तरह से कोशिश की, और जेंजी ने वहीं से उसे पिकअप किया. नाउ दे अडैप्टेड सर्कमस्टांसिस एंड सेटिंग रॉक सॉलिड बाउंड्रीज, एंड वो रॉक सॉलिड बाउंड्रीज जो है उन्होंने, कि वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी आई थी जॉब टाइमिंग्स के साथ, उन्होंने ऐसे बाउंड्रीज बनाए कि जहाँ पे अपने लिए भी वक्त निकालना उन्होंने बहुत जरूरी समझा. दैट मेंटल हेल्थ डिस्कशन, नॉर्मलाइजिंग मेंटल हेल्थ डिस्कशंस बिकेम ए थिंग फॉर जेंजी, की ओवर एग्जॉस्टेड काम पे नहीं होने का और बाउंड्रीज सेट करने का. तो कितनी अच्छी चीज होती है ना कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक ये जो कनेक्शन बनता है, और एक कुछ सिंपल एक फिनोमिनन चेंज होता हुआ देखता है ओवर द जेनरेशंस, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग. अब म्यूज़िक की भी अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो मैं नेक्स्ट गाना जो मैं प्ले कर रही हूँ ना, आई वंडर ये अगर आज से लेट्स से 30 साल पहले भी रिलीज़ हुआ होता, 20 साल पहले भी रिलीज़ हुआ होता, तो शायद नहीं चल पाता. लेकिन आज की दुनिया ने इस कैजुअल अंदाज को बहुत पसंद किया. फ्रॉम द फिल्म रॉकस्टार, A.R. रहमान's क्रिएशन. अगेन a musician who has evolved and adapted with the changing times.

0: कर है, तुम सुन नहीं रहे हो यार।
1: ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा बिल तो दे दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा बिल तो दे दे जाना।
2: कैंस में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।

0: एन एब्सोल्यूट विम्सिकल गाना दैट इट इज. जो मैंने कहा ना कि आज से अगर ये 10, 20, 30, 40, 50 साल पहले रिलीज होता तो इसका हिट होने का कोई चांस ही नहीं था. लेकिन एआर रहमान ने नब्ज पकड़ी है यार आज की जनता की, आज की जनरेशन की, और उन्होंने ऐसे एक विम्सिकल गाने को बनाया विच एज इफ इट वॉज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीपल, राइट. और ऐसा ही कुछ इस अगले गाने में भी आपको मिलेगा, सचिन जिगर. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन या, और एवोल्यूशन जो कि जेनरेशन टू जेनरेशन हमें देखने को मिलता है. एंड इट इज सो ब्यूटिफुल कि द ब्यूटी ऑफ द वन जेनरेशन इज पिक्ड अप और उसी को थोड़ा और अपने हिसाब से इम्प्रूव करते हुए, अपने डेफिनेशन के इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आगे बढ़ती जाती हैं चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल अब सक्सेस का डेफिनेशन ही ले लीजिए. अगर जेनरेशन की मैं बात करूँ ना तो मिलेनियल और जेंजी की बात करने वाली हूँ, एंड उसके आगे का आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है ना. तो क्या है ना कि मिलेनियल्स के लिए एक ट्रेडिशनल ब्लू प्रिंट था सक्सेस का कि कॉलेज डिग्री है, फिर मैसिव लोन्स लेंगे घर खरीदने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, पढ़ाई के लिए भी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड कॉर्पोरेट लैडर्स दैट दे हैड ऑलवेज इन देयर माइंड. और क्विकली उन्होंने रियलाइज किया कि दिस मैथ इज नॉट मैथिंग, यानी कि इट्स नॉट एडिंग अप. तो उन्होंने एक साइड हसल भी शुरू किया कि मतलब अपने पैशन को लेकर कुछ बिजनेस शुरू किया, या अपने पैशन को थोड़ा सा और लेकर डूबने लगे, है ना. जेंजी ने पिकअप किया वहीं से कि यार पैशन को साइड हसल के तरह पे क्यों देखें, पैशन को अपनी जिंदगी बनाते हैं यार, पैशन को अपना जॉब मानते हैं. How about that? For them, a job was, yeah, is, कहना चाहिए, is just what they do. It's not what they are. अगर वो एक serious काम में भी जुड़ते हैं जहाँ से उनको पैसे मिल रहे हैं, उसको वो अपनी identity नहीं समझते. वो अपनी identity समझते हैं जिस passion को वो follow करते हैं, जिस तरह वो दुनिया के सामने अपने social media पे वो project करना चाहते हैं उस passion के जरिए. And how beautiful is that? Isn't it true? You are listening to Funisha Radio 104.9 FM. गपशप गली में सब ठीक है ना?
1: Hey, बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: बस चल रहा है भाई.
1: What about you?
2: हाँ चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है.
1: और तेरा?
2: बस चल रहा है. ओ, कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई? लिख के दूं क्या?

0: एम कम्प्लीटली ड्रॉइंग अ ब्लैंक. मुझे याद है कि 70s में एक फिल्म बनी थी एंड आई थिंक गुलजार हैड डायरेक्टेड द फिल्म विच हैड मीना कुमारी एंड विनोद खन्ना, और ऐसे ही कुछ सिस्टम के ऊपर एक साकाज़म था उस गाने में, एंड ऐसे ही कुछ कि सब हालचाल ठीक ठाक है. हाँ, आई थिंक दैट वॉज द सॉन्ग. एंड उस गाने में भी कुछ इस तरह का ही है कि घंटा ठीक है लेकिन वही एक सटायर था उस गाने में. इफ़ यू एवर कम अक्रॉस दैट सॉन्ग, डू लिसन टू इट एंटायरली एंड इट विल टेल यू क्या चल रहा था उस जमाने में गवर्नमेंट और सिस्टम की, जो उन्होंने एक सटायर में गाने में एक पिरो के प्रेजेंट किया था. एंड दैट्स व्हाट इट इज, यू नो, हम चेंज की एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वैसी हैं, बस अंदाज हो सकता है थोड़ा बदल गया है. जैसे कि मैंने कहा ना कि वो 70s का गाना और ये गाना देख लीजिए, दोनों में ही सटायर है कहीं पर और दोनों का अंदाज बयां करने का बिल्कुल अलग है. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. शायद तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे सम वॉट एक ओवरलैप रहता ही है जेनरेशन्स के साथ. और ऐसे में जेन ज़ी का जो एक जो बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट सेगमेंट.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson, and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out, or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897. Or visit astrologerishwar.com.
7: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल info@seemamehtalawfirm.com.
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्डर टू गेम.
9: Tracks that put you on the right track.

बहुत चीज हमारे इर्द गिर्द चेंज होती रहती है, लेकिन उसमें एक चेंज जो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको वो है श्री कृष्णा ज्वेलर्स पे। इनकी जो क्वालिटी है वो अब भी उतनी ही खरी है जितनी उन्होंने जब स्टार्ट की होगी इन 1967। एंड दैट्स द क्राफ्ट्समैनशिप एंड द ट्रस्ट दे ब्रिंग विद देयर ज्वेलरी कलेक्शन, चाहे वो गोल्ड में हो, डायमंड में हो, कुंदन या पोलकी में हो, उनकी कलेक्शन शानदार होती है और क्वालिटी भी साथ में। सो डू विजिट देयर न्यू लोकेशन 13145 सुवीट 220 इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट। डू रिमेंबर दैट इट्स श्री कृष्णा ज्वेलर्स। कुछ अच्छे बेहतरीन गाने और आवाज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, और वक्त के साथ कितना कुछ बदला है, आवाज़ें भी तो बदली हैं। और ऐसे में एक आवाज़ जिसे सब जानते हुए भी नहीं जानते, यू नो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भी इनके गाने हमने सुने नहीं हैं। तो देखिए, अगर बिना गूगल करके आप इस आवाज़ को पहचान सकते हैं कि नहीं, बिकॉज इफ़ यू डू देन आई हैव दिस $20 नियॉन कैक्टस गिव अवे फॉर ऑल ऑफ यू। ज़रूर कॉल कीजिए, दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आपको जो ये मेक्सिकन फ्यूजन खाना मिलेगा विद दैट ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड दैट ग्रेट एम्बियंस ऑफ द प्लेस, द वाइब दैट दे हैव फॉर ऑल ऑफ यू, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और फिर मंडे टू फ्राइडे इनका हैप्पी आवर चलता है, कुछ अमेजिंग क्यूरेटेड कॉकटेल्स और मॉकटेल्स आपको यहाँ पे जो मिलेंगे वो भी कमाल के हैं। तो चाहे आप अपने बंधुओं के साथ हैंग आउट करने के लिए जाएं, या फिर डेट नाइट पर जाएं, एक परफेक्ट प्लेस की अगर तलाश हो, या जस्ट ऐसे फैल के रिलैक्स करने की भी इच्छा अगर हो, तो दिस इज़ द प्लेस, नियॉन कैक्टस, लेडीज एंड जेंटलमैन। इट इज़ इन फेयर व्यू ऑन स्टेसी रोड, फॉर ऑल ऑफ यू टू नो। एंड येस, यू कैन विन दैट $20 गिव अवे अगर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैं गाना लगा रही हूँ इनके सिंगर कौन है। और अगर आपने बिना गूगल के किया ना, तो अपनी पीठ थपथपाना ना भूलें।

All right, ladies and gentlemen, I have to, say to all of you कि मैंने कहा था कि ये आवाज़ जो ज़्यादा हम सुनते नहीं हैं वो ऐसी आवाज़ है जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं. तो ये मैं वापस लेती हूँ क्योंकि इस गाने के दो वर्जन्स थे. अब वर्जन लगा दिया और मैंने फ़ोन कॉल ले लिया तो मुझे आवाज़ बाद में सुनाई दी एंड इट वॉज़ इन डीड राहत साहब्स वॉइस. एंड यू आर राइट शिवा, यू एब्सोल्युटली गेस्ट इट राइट. तो इसीलिए आपको $20 का गिफ्ट कार्ड, डाइन इन गिफ्ट कार्ड जो है फ्रॉम नियॉन कैक्टस बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो मैं लगाने वाली थी वो तो दूसरा वर्जन था और दूसरी आवाज थी, और वो आवाज है शाहिद माल्या की. व्हाट एन अमेजिंग वॉइस ही हैज एज वेल. और ये आवाज इसको शायद ज्यादा मौका नहीं मिलता है और मिलना चाहिए एक्चुअली. बट यस, आई थिंक दिस गोज ऑन टू प्रूव कि समटाइम्स यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट. हमारे ये शोज जो होते हैं ना कितने इम्परफेक्ट होते हैं, हम कितने सारे ऐसे गलतियाँ कर जाते हैं और उन गलतियों के साथ चलते रहना, दैट्स द नेम ऑफ द स्टोरी, द लाइफ जिसका नाम है. जी हाँ, तो यहाँ पर मैं ये बात मैंशन करना मेरे ख्याल से डबली ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई आज की जनरेशन में जो एक क्वालिटी है कि वो इम्परफेक्शन को जिस तरह से एम्ब्रेस कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा लगता है देख कर. इम्परफेक्शन इज़ द न्यू परफेक्शन इन देयर डिक्शनरी एंड दैट इज़ वॉट आई एम एब्सोल्यूटली लविंग. वेन आई से दिस आई नो आई एम जनरलाइजिंग, नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट, बट दिस इज़ द न्यू ट्रेंड दैट वी आर सीइंग कि जहाँ पे जो हमारे जेंजी के पहले के जेनरेशन्स थे वो एक ना एक एक मतलब परफेक्शन की तलाश में थे. वो अभी भी हमारे ख्याल से हमारे पिक्चर्स और ये सारे आप सोशल मीडिया पे देखोगे विथ ऑल दोज फिल्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट गोइंग ऑन, इट मेक्स एवरीथिंग सो प्लास्टिक एक्चुअली. एंड वहाँ पे जेंजी रिबेल कर रहा है और जेंजी वो लेकर आए जो एक ब्लर्ड, वेरी कैजुअल, नॉट एनीथिंग परफेक्ट. इफ दे हैव पिंपल्स ऑन देयर फेस दे आर शोइंग इट. If they are not wearing the most right clothes for social media, they are still going ahead and putting up the pictures in pajamas and all of that. And that's the beauty of this concept ki imperfection jo hai aaj ka naya definition hai for perfection, and that is just beautiful. I think Shahid Malia sahab ki awaaz for this gana. आपने पता नहीं वो पिछले गाने का Shahid Malia version suna hai ki nahin. That one is also very very beautiful. A big shout out to Shahid Malia.

गुम है जी हाँ, कुछ चीजें वाकई में गुम हो गई है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैसे मैन्युफैक्चर्ड परफेक्शन के इस दौर में हमारे ग्लिचेस और मेसी मोमेंट्स आर एक्चुअली द कूलेस्ट थिंग्स अबाउट अस. अगर आपको लगता है कि इम्परफेक्शन इज ऑथेंटिक सिर्फ एक थियोरेटिकल थॉट है, तो चलिए मैं कुछ ना ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ शायद जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए. मतलब इमेजिन कीजिए आपके सामने कोई फर्राटेदार एब्सोल्यूट फ्लॉलेस टेक्स्ट बुक ग्रामेटिकल प्रिसिशन के साथ हैवी वर्ड्स के साथ कोई लैंग्वेज बोल रहा है, मान लो इंग्लिश ही. लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉबेबली शशि थरूर देन, है ना, कि वो सुनने में बड़ा इनक्रेडिबल लगता है. आप एक एक ऑ में रहते हो ऐसे लोग जो कमाल की लैंग्वेज पे ग्रिप रखते हैं, है ना. कुछ कुछ टू दी एक्सटेंट कभी कभी वो कस्टमर सर्विस वाली फील आ जाती है, लेकिन नॉट शशि थरूर ऑफकोर्स, बट आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट. लेकिन मैजिक सच में उसमें है, रियल फ्रेंडशिप जब थ्राइव करती है, जब एक क्योटिक मिडिल ग्राउंड हमें मिलता है कि हम आधा सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, यू नो, उस तरह की एक जो बात होती है ना. और कभी कभी तो हमारा लोकल टेक्सस लैंग्वेज भी आ जाता है, यॉल ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं हमारी, है ना. तो ये जो होता है ना, दैट इज़ वॉट इज़ एब्सोल्यूट ऑथेंटिक. इट्स 100% ऑथेंटिक कनेक्शन वेन वी टॉक इन दैट डाइल्यूटेड फॉर्म. इज इट राइट और रॉन्ग, दैट इज समबडी टू जज. वो जो लैंग्वेज के शौकीन है शायद वो ये इस बारे में जज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसी बात में है कि हम जब एक कैजुअली फैल के बात करते हैं ना, तब हमारी भाषाएं कहाँ इंग्लिश शुरू हो रहा है, कहाँ हिंदी शुरू हो रहा है, ये हमें पता नहीं चलता. इज़न्ट इट ट्रू?

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और गाने का जो स्कोप है उसका स्कोप मैं कैसे छोड़ सकती हूँ. लेट्स गेट डाइव इनटू दिस नेक्स्ट ट्रैक. और अगले सेगमेंट में फीफा अपडेट्स कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फनीशा रेडियो.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
7: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ.
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
12: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
13: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
9: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
10: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
10: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
17: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
18: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
9: Visit psychicramnath.com. Call 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving or Garland mein uplabdh.
19: Astrology readings for guidance only and results may vary.
20: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
21: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
22: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
0: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
22: बेटा 95% आए?
23: हाँ मम्मी।
22: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
24: मेरा?
22: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
24: वो
25: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
26: दिस इज अली ज़फर एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
27: Tracks that put you on the right track.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने सॉफ्ट म्यूजिक सुनना था हमने सुन लिया इसके बाद, क्योंकि अब धमाका ही होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि आज धमाकेदार मैच जो होने वाला है, एंड दिस इज फीफा सेगमेंट. आई कैन नॉट बी एनी मोर सॉफ्ट ऑन माय सेगमेंट नाउ, इट हैज़ टू बी ऑल धमाका, राइट? टुडे एट 2 PM डालस स्टेडियम में इन आर्लिंगटन, इट इज होस्टिंग द बिगेस्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार. यूरोपियन चैंपियन स्पेन टेकिंग ऑन द 2-time वर्ल्ड champions France in a massive semi-final clash. It's going to be fantastic, ladies and gentlemen. If France wins, they become only the second European nation ever to play in 3 successive World Cup finals. लेकिन उनके सामने स्पेन की एकदम स्लिक और वेरी स्टर्डी जो ये दीवार है वो कैसे पार करेंगे, जिसे स्पेन के कोच ने कहा है कि दिस इज द फाइनल बिफोर द फाइनल. अब ये मतलब एक तरह से जंग का ऐलान जो हो चुका है. दोनों टीम के बीच एक स्टोरी राइवलरी रही है. हिस्टोरिकली स्पेन होल्ड्स द अपर हैंड विद 18 विंस आउट ऑफ 38 मीटिंग्स, वाइल फ्रांस हैज 13. क्योंकि एक साल पहले ही नेशंस लीग के सेमीफाइनल में एक क्रेजी 5-4 थ्रिलर हुआ था बिटवीन देम, और लमीन यमाल के रेस ने एक्चुअली फ्रांस को नॉकआउट किया था. तो फ्रांस एंटर्ड द सेमीज आफ्टर अ परफेक्ट ग्रुप स्टेज एंड ए डोमिनेंट 2-0 विन ओवर मोरक्को. एज वी ऑल नो, उनका अटैकिंग यूनिट बहुत कमाल का है, एब्सोल्यूट फायर पर है, और एम्बापे लीड्स द गोल बूट रेस विद 8 गोल्स एज वी ऑल नो. एंड देन देयर इज उस्मान एंड ही हैज 5, और माइकल उनके पास है 5 असिस्ट का क्रेडिट. दूसरी तरफ स्पेन टॉप देयर ग्रुप विद 7 पॉइंट्स एंड बीट बेल्जियम 2-1 इन द क्वार्टर फाइनल्स एज वी नो. एंड रोहास कंट्रोल केयरफुल गेम मास्टरमाइंड, और उनके साथ जो हैं वो हैं पेड्री एंड रॉड्री एंड अदर्स इन मिडफील्ड, और उनका सॉलिड डिफेंस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार ब्रीच हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्टा सुपर कंप्यूटर प्रिडिक्शन, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर प्रिडिक्ट करता है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने मतलब ऑप्टा सुपर कंप्यूटर ने प्रिडिक्ट किया है कि फ्रांस हैज़ ए 42.1% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जबकि स्पेन्स विनिंग चांसेस आर एट 31.8%. फ्रांस इज डेफिनेटली द टूर्नामेंट फेवरेट राइट नाउ, एंड देखते हैं कि आज क्या होगा 2 बजे. लेट्स गेट ऑन विथ दिस म्यूजिक लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि यहां से म्यूजिक बस धमाकेदारी होने वाला है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

कैसा लग रहा है इस गाने का एनर्जी आपको? बस ऐसा ही कुछ एनर्जी बिल्कुल वो ना बिल्कुल होने वाला है डैलस स्टेडियम में, और वहीं हम लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि आई एम श्योर हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं और तैयारियां चल रही हैं दैट फ्रांस वर्सेस स्पेन जो मैच आज होने वाला है सेमीफाइनल का, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच एंड द फाइनल मैच इन डैलस स्टेडियम दैट्स हैपनिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। तो अगर आपने वो पूरी जो ये जो टीम है इनको देखा तो ये बड़े क्रिस्प लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश एकदम हेयर कट सारे लेकर आए हैं। वेल दैट्स ऑल थैंक्स टू ए 22 ईयर ओल्ड डैलस बेस्ड बार्बर नेम्ड ब्रायन गुआडाडो। और कुछ साल पहले जब स्पैनिश सुपरस्टार लमीन यमाल अपने क्लब बार्सिलोना के साथ यहाँ नॉर्थ टेक्सस आए कंस्ट्रक्टिव मैच के लिए, तो ब्रायन ने एक बड़ा रिस्क लिया था, बड़ा रिस्क नहीं कहना चाहिए मुझे, एक्चुअली बड़ा चांस कहना चाहिए, और काफ़ी सारे स्पेन के प्लेयर्स को उन्होंने इंस्टाग्राम किया था, डीएम किया था इंस्टाग्राम पर, और हेयर कट सर्विसेज ऑफर की थी उन्होंने। एंड गेस व्हाट, उस पर स्क्वाड में से सिर्फ एक बंदे ने, 15 ईयर ओल्ड लमीन यमाल ने रिप्लाई किया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, यमाल डिड नॉट फॉरगेट हिज टैलेंट और ही सॉर्ट ऑफ पर्सनली रिक्वेस्टेड ब्रायन टू कट द एंटायर स्पेन टीम्स हेयर कट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। टॉक अबाउट साइड हसल एंड ट्राइंग टू गेट टू द पीपल यू वॉन्ट टू, हाँ इट इज़ अमेजिंग सीरियसली। एंड स्पेन का हेयर कट भी आप जरूर देखिएगा, इंक्लूडिंग लास्ट मंडे जब स्पेन ने डैलस स्टेडियम में अपना नॉकआउट मैच खेला था तब भी हेयर कट वॉज बाय ब्रायन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, अभी वायरल हो रहे हैं। एज दे से, यू मिस 100% ऑफ शॉट्स यू डोंट टेक, एक सिंपल इंस्टाग्राम मैसेज ने उन्हें इतना पॉपुलर बना दिया। यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विद मी टू। डैलस की एक और चीज बहुत वायरल हो रही है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट।

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जो आज फ्रांस और स्पेन का जो गेम होने वाला है डालस स्टेडियम में, ये डालस में होने वाला आखिरी गेम है. सो लेट्स कीप ऑन सेलिब्रेटिंग टिल द एंड ऑफ द गेम एंड बियॉन्ड दैट, क्योंकि जिस तरह के हमें फैंस मिले हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड हाउ दे हैव लव्ड यू नो डालस इज समथिंग टू रियली रियली यू नो टेक अलॉन्ग विद अस ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट एंड बियॉन्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी शान की बात है कि डैलस की चर्चा इतने बेहतरीन तरीके से हो रही है. एंड टॉकिंग अबाउट विच, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्वे. जी हाँ, मैं जानती हूँ कि नॉर्वेज वर्ल्ड कप जर्नी खत्म हो चुकी है, लेकिन आप ये समझे कि भली क्वार्टर फाइनल्स में इनकी जो जर्नी खत्म हुई और बड़ा दुख भी हुआ उस कारण, पर स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड इज इन टॉक्स स्टिल, और जिस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग हुई है वो कमाल का है. और अर्लिंग हालैंड जो है, ही हैज रिटर्न्ड होम यस्टरडे. द एंटायर नॉर्वे टीम दे रिटर्न्ड यस्टरडे to their homes, and he was spotted stepping off the plane in Norway carrying a taxidermied whiskey raccoon holding a bottle which he bought right here in Dallas. एक iconic जगह है जिसका नाम है Wild Bill's Western Store और जो viral हो चुका है. And yes, Haaland even took to Instagram to ask fans to help him name his new furry friend. और options में कुछ cowboy, ranger, Tex, ये सारे नाम आए हैं, triggering a massive viral craze for the raccoon. And guess what? It's all sold out, ladies and gentlemen. And साथ ही साथ the shirt that he was wearing, that is also completely sold out, which says "You all can kiss my Dallas shirt." That's also off the shelves now. And it was bought right here in Dallas. Talk about Dallas's craze, ladies and gentlemen, that fans can't get enough of.

0: All right, that's pretty much my time, ladies and gentlemen. This is Me Too signing off for the day.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: जा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
17: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
16: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
19: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
22: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
23: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
24: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

अ वेरी गुड आफ्टरनून माय देसी पीपल, आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 12:38 और मेरा और आपका साथ होने वाला है पूरे 2:30 तक। सो लेट्स एंजॉय द शो। और आज जो है ना, आप मैं बहुत ही फिल्मी बातें करने वाली हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि टीवी ऑन किया हो और अचानक से कोई मूवी चल रही थी, आपने सोचा कि बस 5 मिनट देख लेते हैं और यू एंडेड विथ लाइक पूरी की पूरी मूवी ही खत्म कर दी आपने, सारा का सारा देख लिया। कुछ मूवीज होती ही ऐसी हैं कि जिनका एंडिंग, जिनके सारे डायलॉग्स हमें सब कुछ याद होता है, फिर भी हम रिमोट साइड में रख देते हैं और पूरी की पूरी मूवी दोबारा या फिर यू नो मल्टीपल टाइम्स इंजॉय करते हैं। तो आज बात करते हैं उन मूवीज के बारे में जिनको आप बार बार देख सकते हैं बिना बोर हुए। कॉल कीजिए और हमें बताइए कि वॉट इज योर फेवरेट मूवी, वो कौन सी मूवीज हैं जिनको आप बार बार देख सकते हैं। कॉल कीजिए at 972-235-5555।

आज हम बात कर रहे हैं उन मूवीज के बारे में जिनको हम बार बार देख सकते हैं, बार बार देखा हुआ है और फिर भी हम कभी बोर नहीं होते, हर बार शुरू से देखते हैं और अंत तक देखते हैं। और हमें बहुत सारे लिसनर्स के फोन भी आए और उन्होंने अपनी अपनी कंफर्ट मूवी शेयर की कि मतलब स्ट्रेस हो मूवी लगा दो, वीकेंड हो मूवी लगा दो, खाना खा रहे हो थोड़ा सा ही सही लेकिन कोई मूवी लगा दो और अपना पसंदीदा मूवी लगा दो तो और मजा आ जाए। हर जनरेशन की अपनी एक कंफर्ट मूवी है। अभी अमीना जी का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि उनको साजन मूवी जो है काफी पसंद है, वो बार बार देख सकती हैं। एंड द सेम गोज विद हम है राही प्यार के। और मीत ने हमें कॉल किया, उन्होंने बताया कि उनको थ्री इडियट्स और पीके दोनों मूवीज काफी पसंद है। तो अब जो अगला गाना है वो हम मीत के लिए बजाने जा रहे हैं फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट। बाय द वे लेट मी नो व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज जिनको आप बार बार देख सकते हैं। कॉल करने के लिए डायल कीजिए 9722355555।

क्या आपको पता है कि हम कुछ मूवीज बार बार देखना क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि जब भी लाइफ स्ट्रेसफुल होती है, कुछ भी टेंशन वगैरह होती है हमारी लाइफ में, तो हमारा ब्रेन जो है फेमिलियर स्टोरीज देखना पसंद करता है, उनको सुनना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि उसमें आगे क्या होने वाला है, एंडिंग क्या होने वाली है, तो कोई टेंशन नहीं होती, कोई सस्पेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कम्फर्ट होता है। ऐसे ही एक कम्फर्ट मूवी के बारे में बताया हमें सुल्तान जी ने अभी कॉल करके। उनकी फेवरेट मूवी है बागबान, जिसको वो बार बार देख सकते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट पे हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं फ्रॉम द सेम मूवीज। एंड गेस द सॉन्ग, गेस द सॉन्ग नहीं कर रहे, कोई नहीं, इट्स चली चली।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
4: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
3: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
3: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
6: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 Suite 205, Frisco.
8: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: पर सुनना ना आप किसी और को, फनेशा के सिवा मैं हूँ आरजे सिमी एंड दिस शो इज आफ्टरनून अड्डा। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है, मिस शेफाली पंजवानी, एंड शी इज अ होम लोन एक्सपर्ट फ्रॉम माय फैमिली होम लोन। हाय शेफाली जी, वेलकम टू द शो।
1: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल फनेशा लिसनर्स।
0: थैंक यू शेफाली जी फॉर कनेक्टिंग विद अस। और आपके लिए ना हमारे लिसनर्स की तरफ से एक सवाल है कि ये जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं एंड 1099 अर्नर्स होते हैं, उनके लिए होम लोन लेना थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है एंड हाउ कैन यू हेल्प देम?
1: श्योर, उनके लिए डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि होम ओनर्स और द न्यू बोरोवर्स, अगर उनकी 1099 है इनकम या बिजनेस ओनर्स है तो उनकी इनकम फ्लक्चुएट होती है, वो स्टेबल नहीं होती है एवरी ईयर। इस वजह से वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है एंड वी हैव टू फॉलो डिफरेंट लेंडर गाइडलाइंस एज पर द सिनेरियो। और जबकि W2 जो होते हैं वर्कर्स, उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इनकम स्टेबल होती है और वो लोग क्वालिफाइड होते हैं ट्रेडिशनल मॉर्गेज के लिए। एंड 1099 बिजनेस ओनर्स, उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, नॉन QM लोन्स होते हैं, कन्वेंशनल भी क्वालिफाई होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो उनको उनके सिनेरियो के बेस पे क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 1099 इनकम है या बिजनेस इनकम है, सो फ्लक्चुएशंस इस हिसाब से होते हैं। जैसे एवरी ईयर ईदर इफ वी हैव टू टेक लास्ट 3 years and when we look back into it, there may be some addition of the businesses, or they may have sold some businesses and they may have added some investment properties. So uske hisab se pura income calculation different ho jata hai and we have to get them the best program available for them. There are several programs available for them. Asset depletion program available hota hai जो आपकी लिक्विड एसेट्स के बेस पे आपको क्वालिफाई करता है आपकी इनकम को। लेट्स से आपकी ट्रेडिशनल इनकम क्वालिफाई नहीं हो रही है और आपकी बिजनेस इनकम, सो वी कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। फिर बैंक स्टेटमेंट प्रोग्राम होता है जो ईदर बिजनेस और पर्सनल, नॉट बोथ, ईदर बिजनेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वालिफिकेशन डिटरमिन करता है कि आप कितना क्वालिफाई कर सकते हो। And there is also VOE programs available. So there are several programs available for 1099 borrowers and business owners, just depending on their individual scenario. Because I'm seeing a lot of right now borrowers who wants to buy a new construction home. And they still have their departing residence, we call it, because they own the primary residence on which they have some mortgages. And they don't qualify for both of them. So we have a program that is also qualifies them, which is considered as a departing residence because their home is in the market. They want to sell it. And by the time on the other side, the new construction home is ready, which they have to move in, whatever the contract date is. So we have programs which can help them get out of the situation and achieve what they want to achieve. So for any of your purchase, refinancing, home equity loans, HELOANs, you can give us a call at 469-734-3338. Again, we have several programs available for homeowners, investors, or anybody who is trying to make some renovations at home or trying to consolidate their debts. We have home equity programs available. And for purchase and refinance, we right now have our $2,000 best price guarantee program. You can give us a call or you can find out more on my website, myfamilyhomeloan.com, or you can call me at 469-734-3338. Thank you.
0: Thank you so much, Shefali ji, for your insights, and we'll connect with you again. Thank you so much. Have a good day.
1: You too.
0: अब जो मैं नेक्स्ट गाना बजाने जा रही हूँ वो रिक्वेस्ट आई है सफी से, तो सफी द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर यू।

आ गई आ गई, और अकेले नहीं आई हूँ, चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे भी अपने साथ लेके आई हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉल करना है, और अगर आप ये गिव अवे राउंड जीत जाते हैं विद योर करेक्ट आंसर तो आपको मिलेगा चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन द डाइन इन ऑप्शन। ये लोकेटेड है इन मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, तो तैयार हो जाइए। मैं एक बहुत ही आसान सा, ट्रस्ट मी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और जिसने सबसे पहले फटाफट मुझे कॉल करके बताया जीत उसकी। ठीक है, तो सवाल ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली एक ड्रेस है जिसको कि आप पहन नहीं सकते, देयर इज अ ड्रेस दैट यू कांट वेयर, व्हाट इज दैट ड्रेस? आपको बताना है मुझे कॉल करके एट 972-235-5555।

जी हाँ, हमें भी अपना विनर मिल चुका है और आज जो चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे जिसने जीता है उनका नाम है सौरभ। कॉन्ग्रेचुलेशंस सौरभ, आपको मिलता है $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50। आप यहाँ पे जाएं, डाइन इन करें, मैकडॉर्मट ड्राइव में लोकेटेड है। और ना इनकी एक स्पेशलिटी बताती हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे जो इनका लंच आवर होता है उसमें वो हर दिन नए नए डिशेज लेके आते हैं। दे डू नॉट रिपीट देयर डिशेज, इजंट दैट इंटरेस्टिंग। फॉर मोर डिटेल्स डू गो टू देयर वेबसाइट व्हिच इज chandigarhbites.com, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स स्टे ट्यून्ड टू फनेशा रेडियो 104.9 FM।

0: वी वर लिसनिंग टू मस्कारा, जो कि आजकल ना मेरा फेवरेट सॉन्ग हो चुका है। मैं लगातार इसको सुनती रहती हूँ एंड आई हैव नोटिस कि इसके पहले मैं माशुका सुन रही थी। सो वी हैव मूव फ्रॉम माशुका टू मस्कारा रियल क्विक। और आजकल एक और सॉन्ग है जो मेरे गाड़ी वगैरह में बजता रहता है, दैट इज मस्कर। तो इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग, सब कुछ एक जैसा लगता है। आई विल कम टू यू आफ्टर द ब्रेक, ओके स्टे ट्यून्ड।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
7: Visit www.senadainc.com today.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
16: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम विद मी यानी कि आरजे सिमी शो चल रहा है आफ्टरनून अड्डा और मैं हूं आपके साथ 2:30 बजे तक। और अभी मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ से टिप ऑफ द डे बताने वाली हूं, हेल्थ टिप ऑफ द डे। ओके, तो ध्यान से सुनिए कि जो हमारा ब्रेन है ना, इट कैन कंटिन्यू फॉर्मिंग न्यू कनेक्शंस इवन लेटर इन लाइफ। तो हम सब जब सुनते आ रहे हैं कि यंग एज में सीखा जो सीख लिया फिर बाद में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स हो या फिर सॉल्विंग पजल्स और ऐसे बहुत सारे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को रेगुलरली इंगेज रखते हैं, तो दैट हेल्प्स कीप द ब्रेन एक्टिव। ओके गाइस, सो डू कीप योर ब्रेन्स एक्टिव। अपने आप को कोई ना कोई अपस्किलिंग करते रहिए, लोगों से मिलिए, बातें करते रहिए, ताकि आपका ब्रेन आपका जो है एक्टिव रहे, हेल्दी रहे।

अजी हीर सैड क्यों नहीं होगी, आप उसको मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में जो नहीं लेके जा रहे हैं, उनके स्पेशल मोमेंट्स को स्पेशल नहीं बना रहे, बट अभी भी देर नहीं हुई, आप अभी जा सकते हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में, जो कि लोकेटेड है एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, और ये है आपका डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी जो कि एलिगेंट है, टाइमलेस है, और इसका हर पीस ना क्राफ्ट किया गया है शाइन करने के लिए, एकदम स्पार्कल करने के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स से लेके नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल से लेके सब कुछ जो कि आपको चाहिए अपने एंगेजमेंट के लिए, एनिवर्सरी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, या फिर अपने आप को ट्रीट देना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ जरूर जाए। अगर आप उनको इनका लेटेस्ट कलेक्शन देखना है, लेटेस्ट ऑफर्स वगैरह क्या चल रहे हैं, क्या नया आया है, तो आप उनका ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे। It's again Malabar Girls and Diamonds, guys.

मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मीठी मीठी गल्ला करूँ, आप सबसे ढेर सारी बातें करूँ और फोन लाइंस एक्टिव हैं, आप जरूर हमें कॉल करें और बताएं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे। वैसे अगर आपको जरूरत है किसी की, किसी ऐसे इंसान की जो कि आपको फाइनेंशियल गाइडेंस दे, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प करे, आपके लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए जो कि आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ हो, रिटायरमेंट हो या फिर आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को मीट करता है, देन यू शुड रीच टू माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाई CPA सुधीर पाई एंड इनका वेबसाइट है mytimeequity.com। अगर आप इनको कॉल करके गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो इनका नंबर है 4697021272।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
5: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: Documents ya parcel bhejni hai?
9: हाँ।
8: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ।
8: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ।
8: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
12: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
11: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
12: वेट, व्हाट?
13: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
14: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
13: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
15: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
16: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

यू आर लिसनिंग टू मखना ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी ऑन योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके उनके हॉस्पिटल या क्लिनिक, तो वो आपको कितना टाइम देते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट? लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ डॉक्टर्स आपके साथ स्पेंड करते हैं पूरे के पूरे 30 मिनट, क्योंकि इनका मानना है कि आपके हेल्थ को बेहतर समझने के लिए 5-10 मिनट काफी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको पेशेंट नहीं, फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, आपकी केयर ली जाती है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा सेंटर जो कि आपको एनुअल फिजिकल चेकअप में हेल्प करे, एंग्जाइटी केयर सर्विसेज के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स अगर आपको हैं, या फिर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसकी टेस्टिंग करानी है, या फिर कोई भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं, तो डू गो टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। यहाँ का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको कॉल करना है @214666259। ओके,

भाई देखो, मेरा मन तो तभी लगता है जब मेरा पेट भरा हुआ हो, जब मुझे कुछ अच्छा खाने को मिले। और अच्छे खाने की बात हो रही और पेज 3E3 की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के जो कबाब्स हैं वो इतने सिजलिंग, इतने टेस्टी हैं, और जो चाट है वो काफ़ी फ्लेवरफुल है, और इनके रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स की तो क्या ही कहा जाए। अगर आप अभी तक पेज 3E3 नहीं गए हैं, जो कि लोकेटेड है एट हब 121, तो देन यू आर सीरियसली मिसिंग आउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एंड दैट्स कॉल्ड गुड फूड। यहाँ पे आपको बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा, जो कि मॉडर्न फ्लेवर के साथ मिक्स होके कमाल का टेस्ट, एक माल का फ्लेवर लेके आता है आपके टेस्ट बड्स तक। यहाँ आप जा सकते हैं ब्रंच के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, डेट नाइट के लिए, या फिर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए, फूडी मीटअप के लिए भी जा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा इंजॉय कर सकें। उनके वाइब्स भी काफ़ी वाइब्रेंट है यार। डू चेक द रेस्टोरेंट आउट एट हब 121, लाइक आई सेड। और अगर आपको इस पे और डिटेल्स चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए, विच इज़ pastryeatery.com। और अब जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, वो मैं सोहेल और मरियम की रिक्वेस्ट पे प्ले करने जा रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम हाउसफुल 5।

अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप ढूंढ रहे हैं कमर्शियल एनर्जी का सॉल्यूशन, देन डू रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी. क्यों? क्योंकि इनके रेट्स कॉम्पिटिटिव हैं, इनकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी रिलायबल हैं, और इनके एनर्जी प्लान ना कस्टमाइज्ड हैं, जो आपको और आपके बिजनेसेस को काफ़ी हेल्प करेंगे. और ये टेक्सास बिजनेसेस की हेल्प करते आ रहे हैं सिंस 2002. आई मीन इनके पास अमेजिंग एक्सपीरियंस भी है. अगर आपको इनसे बात करनी है, कंसल्टेशन लेना है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं @ 844-428-2808, या फिर आप इनके वेबसाइट पे जाइए, which is taraenergy.com.

आई नो कि आप सब मुझे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अब 2:30 बजने को आए हैं और मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये था आपका आफ्टरनून अड्डा एंड दिस पार्ट ऑफ द शो वाज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल इंडिविजुअल्स के लिए भी एज वेल एज फॉर बिजनेसेस। ये ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है और आपको फ्यूचर के लिए एकदम रेडी कर लेते हैं। आपको टैक्स प्लानिंग में काफी मदद मिल जाएगी। डू कॉल देम एट 4699429888 या फिर उनके वेबसाइट भी है जहां आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, विच इज ajfintax.com। एंड मैं कल फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर।

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
6: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jaun? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और जी मैं रहती हूं आपके साथ मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 2:30 PM टिल 5 PM आई एम हैव विद यू एवरी वीक डे. और लेके आती हूं आपके लिए एवरी डे कुछ नया, कुछ डिफरेंट. और आज है ट्यूजडे और ट्यूजडेज को आपके लिए आता है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डालते हैं एक ऐसे सितारे पे जिसने हमें अपने काम से बहुत ज्यादा एंटरटेन किया. दे गेव सम एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल म्यूजिक टू बॉलीवुड, चाहे वो एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, लिरिसिस्ट हों, म्यूजिक कंपोजर्स हों, एनीवन जो हमें एंटरटेन करते हैं इज हु वी सेलिब्रेट राइट हियर ऑन बॉलीवुड स्पॉटलाइट, राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज जिस पे हमने स्पॉटलाइट डाली है जी, वो है अगर शाहरुख खान के बाद मैंने इतनी एनर्जी किसी शख्स में देखी तो वो ये स्टार हैं. ही इज द रैविशिंग रणवीर सिंह.

जी हाँ, वो जो एक कंटेजियस एनर्जी होती है ना, आई थिंक रणवीर सिंह उस आदत से मजबूर हैं दैट ही हैज दिस एनर्जी दैट जस्ट यू नो ट्रांसफर्स इनटू एवरीवन अराउंड हु इज प्रोबेबली अराउंड हिम, या जैसे हम टीवी पे उन्हें देख रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी हम तक भी टीवी के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है. आई थिंक ही इज आदत से मजबूर फॉर दैट. और आज हमने स्पॉटलाइट डाली है रणवीर सिंह पे, जो कि 6 जुलाई 1985 इज हिज डेट ऑफ बर्थ. एक्टर हैं और ऑफकोर्स हिंदी फिल्मों में काम करते हैं. नोन फॉर हिज वर्क इन वैरायटी ऑफ जॉनर्स और बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हुए हैं, उसके ऊपर हम तस्करा थोड़ा सा बाद में चल के करेंगे. फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं, 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, और बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी फिल्मों के लिए जीता. और साथ ही साथ ही इज ऑफकोर्स अमंग्स द हाइएस्ट पेड एक्टर्स दैट हैज बिन फीचर्ड इन द फोर्ब इंडियाज सेलिब्रिटी 100 लिस्ट सिंस 2012. कुछ बेहतरीन फिल्में रणबीर कपूर ने हमें दी और उसी रणवीर सिंह ने हमें दी, और उसी के साथ कुछ बेहतरीन गाने जो पिक्चराइज हुए रणवीर सिंह पे. आजकल तो खैर वो लेटेस्ट सेंसेशन धुरंधर की वजह से बने ही हुए हैं, और फिर खबरों में भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई उनकी डॉन 3 की एग्जिट को लेके, और फिर एक नया बवाल मच गया डॉन 3 को लेके. बट यू नो वो कहते हैं ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा.

एंड विद दैट आप से एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूं, और वो ये कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं, या फिर कोई स्लिप या फिर फॉल इंसिडेंट है, तो हम सब जानते हैं कि दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है. तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड लेट अटर्नी उमर ख्वाजा टेक केयर ऑफ द रेस्ट फॉर यू. अटर्नी उमर ख्वाजा एंड देयर टीम विल हेल्प you fight your case, get you the best compensation that you deserve. Aur best part ye hai ki aapko kuch pay nahi karna jab tak ki aap jeet nahi jate. It is a win-win situation for you. So if you or someone you care for or you know is going through something like that, to attorney Umar Khwajar ka number note kar lijiye, give them a call 469-300-5046. 469-300-5046 is that number, ya phir unki website visit kijiye, which is attorney omar.com. Once again, the website is attorneyomar, omar.com. बॉलीवुड स्पॉटलाइट सुन रहे हैं हम आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण पे. आज हमने स्पॉटलाइट डाली है रणवीर सिंह पे, द रैविशिंग, द हैंडसम, द फुल ऑफ एनर्जी, वो कहते हैं ना कंटेजियस एनर्जी वाले रणवीर सिंह. अब जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ही स्टार्टेड हिज करियर, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट. ही स्टार्टेड हिज करियर विद द मूवी जिसमें वो फुल फ्लेज हीरो के तौर पर आए, दैट इज 2010 में बैंड बाजा बारात. बिट्टू शर्मा का रोल उन्होंने किया, एंड आई थिंक बिट्टू शर्मा के रोल में वो ऐसा जचे कि मैं और आप जो देखने वाले थे उनको पहले से अंदाजा हो गया था कि दिस एक्टर हैज लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. और ना सिर्फ ये कि इस मूवी को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, बल्कि बैंड बाजा बारात के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड जीता रणवीर सिंह ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में. उसका गाना अभी आपने ये दम दम सुना, थोड़ी देर बाद आपके लिए एमी एमी जरूर लगाऊंगी, बिकॉज उसके बगैर बैंड बाजा बारात की का जो किस्सा है वो पूरा नहीं होता. लेकिन फिलहाल आपको बताऊं कि बैंड बाजा बारात के बाद अगली जो फिल्म आई रणवीर सिंह की, दैट वाज लेडीज वर्सेस रिकी बहल, जिसका गाना भी हम प्ले कर चुके हैं. एंड देन देयर वाज लुटेरा. द फिल्म वाज नॉट वेरी वेल रिसीव बाय द ऑडियंस, बट द सॉन्ग्स वाज ब्यूटिफुल, एंड दिस सॉन्ग इज डेफिनेटली अ क्लासिक.

और अगर आप F1, H1B या फिर L1 वीज़ा पे हैं या फिर किसी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा स्टेटस पे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू योर पाथ टू परमानेंट US परमानेंट रेजिडेंसी, तो द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता आर हेयर टू हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी टीम एक्सपीरियंस्ड है जी, एंड स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम्स, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन एज वेल एज US सिटीजनशिप. इन सारों में से कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आप का सवाल हो और एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस विद अटर्नी सीमा मेहता एंड हर टीम, देन प्लीज सेंड देम एन ईमेल. दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com. एक बार फिर ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, दैट इज info@seemamehtalawfirm.com. दीज आर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता दैट आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू वेयर योर इमिग्रेशन नीड्स आर कंसर्न्ड. और इसी के साथ बात कर रहे थे रणवीर सिंह की फिल्मों की. लुटेरा फिल्म से आप ये गाना सुन रहे थे जिसमें वरुण का किरदार उन्होंने अदा किया, और फिर आई एक ऐसी मूवी जिसने रणवीर सिंह की एक बार फिर ट्रैजेक्टरी को बदल दिया. एक

तो बैंड बाजा बारात से यू नो ही मेड दैट मार्क. बट जब आई गोलियों की रास लीला रामलीला, दैट इज वेयर वी सॉ हिम फर्स्ट टाइम विद दीपिका पादुकोण. दैट इज वेयर रणबीर ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि दिस इज वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग दीपिका एंड दैट इज वेयर आर स्टोरी स्टार्टेड. दीपिका उस वक्त एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस ऑब्वियसली बन चुकी हुई थी, रणबीर नए नए थे और उनका उनकी कभी इंटरव्यू सुनी आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने कहाँ पर यह इंटरव्यू दिया था, बट ही सेड दैट आई सो फेल इन लव विद दीपिका ऑन द सेट्स ऑफ रामलीला, गोलियों की रासलीला रामलीला. बहरहाल रामलीला बहुत ज्यादा हिट हुई, उसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं. गाने तो एक से बढ़कर एक, संजय लीला भंसाली साहब जिस चीज को हाथ लगा देते हैं वो बन जाती है सोना. फिलहाल मैं आपके लिए ये गाना प्ले कर रही हूँ, टेकन फ्रॉम द मूवी गोलियों की रासलीला रामलीला.

एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग अप फ्रॉम द मूवी गुंडे, जिसमें हमें नजर आए रणवीर सिंह विद अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान भी मौजूद थे गुंडे फिल्म में, और कुछ आउटस्टैंडिंग गाने इस फिल्म के. वन ऑफ दीज इज डेफिनेटली समथिंग जिसके बगैर हमारी कोई पार्टी पूरी नहीं होती. दिस एंट्रिया.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji. 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
3: अरे डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: इट्स लॉसन.
4: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
5: इट्स लॉसन.
4: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
6: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
9: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

टेकन फ्रॉम दिल धड़कने दो सुन रहे थे आप ये गाना बॉलीवुड स्पॉटलाइट सुन रहे हैं आप. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और बॉलीवुड स्पॉटलाइट में आज हमने स्पॉटलाइट डाली है किस पे? जी हाँ, रणवीर सिंह पे. और रणवीर सिंह के ही पिक्चराइज्ड उन पे पिक्चराइज्ड कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड ब्यूटिफुल म्यूजिक दैट इज लाइंड अप फॉर यू. और आपको बताएं जी कि रणवीर सिंह ने अपने करियर का एक्चुअली ही ग्रेजुएटेड from Indiana University Bloomington and then he made his acting debut with Yash Raj ki jo leading film thi Band Baja Barat. Usse inhone apna acting debut shuru kiya 2010 mein aur iske liye inhone Filmfare Award bhi jeeta for best male debut ka. Uske baad Lutera mein jo unhone ek you know ajeeb se chor ka sa kirdar kiya tha, thief the, wo bahut hi pasand kiya logon ne. Although the film was not a hit but Ranveer Singh was quite appreciated in the movie. Uske saath phir Sanjay Leela Bhansali ki आई गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 में, बाजीराव मस्तानी इन 2015, पद्मावत इन 2018. फिर तो ये बन गए थे संजय लीला भंसाली के गोल्डन आइड या ब्लू आइड बॉय आप कह लीजिए. और रणवीर ने इन तमाम ही फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा इनको तारीफ़ें मिली, अवार्ड्स मिले, बहुत कुछ जीता. दैट रिमाइंड्स मी कि अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी रणवीर सिंह की फिल्म फेयर की अवार्ड जर्नी के कौन कौन सी फिल्मों में उनको मिला फिल्म फेयर का अवार्ड या फिर उन्होंने जीती नॉमिनेशन. नाउ दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम हिज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल फिल्म दैट इज बाजीराव मस्तानी. और बाजीराव मस्तानी के लिए इन्होंने जीता अवार्ड, यही बताते हुए आगे चलते हैं जी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता फिल्म फेयर के लिए फॉर द मूवी बाजीराव मस्तानी. हियर इट इज एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल नंबर दिस इज. लिरिक्स आप ले लीजिए, इजहारे वो जो मोहब्बत है वो ले लीजिए. वो कहते हैं आज इबादत क्या कहने,

कुछ गाने सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया है जी. और अगर आप उनके लिरिक्स पे, उनकी शायरी पे गौर करो तो इट जस्ट एब्सोल्युटली सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एवरी टाइम आई लिसन टू दिस सॉन्ग आई टेक अ पॉज. आंखें बंद करके आप इस गाने को एंजॉय कीजिए. ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिएगा, लेकिन वैसे यू नो इट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल नंबर. गाना, म्यूजिक, शायरी, हर चीज कमाल. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि अगर कमाल, तो ये तो गाने का कमाल था, लेकिन अगर आप अपने इवेंट में कमाल करना चाहते हैं, यानी कि कोई इवेंट आ रहा है, आपका वेडिंग है, ग्रेजुएशन है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, या फिर कोई स्पेशल सेलिब्रेशन, और बिफोर दिस के आप परेशान होना शुरू हों कि जी वेन्यू क्या होगा, डिकोर कैसा होगा, केटरिंग कौन करेगा, और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं किसी भी इवेंट्स की, वो आपको नहीं लेनी है परेशानी. आप सिर्फ अपनी खुशी पे फोकस कीजिए, इंजॉय करने पे फोकस कीजिए, मेमोरीज बनाने पे फोकस कीजिए, और बाकी सारी परेशानी ले लेने दीजिए विनेसा इवेंट्स को. लेट देम टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस. वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डिकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, एज वेल एज डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड. ये सब विनेसा इवेंट्स हैंडल कर लेंगे आपके लिए. और अगर आपका कोई भी सवाल है अपने इवेंट को लेके, आप कोई कोट लेना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके जहन में, तो हरी बसेरा साहब को फोन कीजिए एट दिस नंबर 4694428770. 4694428770 is the number. Hari Basera Sahab of Vanessa Events is here to answer all your questions and guide you step by step to have an absolutely, absolutely beautiful event jo aap apne ya apne loved one ke liye prepare kar rahe hain. This is Vanessa Events for you, your celebration partner. And we are right now celebrating Ranveer Singh right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. This is Bollywood Spotlight.

Well, that was taken from the movie Befikre, जिसमें मतलब बाजीराव मस्तानी आई 2015 में, एक कम्प्लीटली डिफरेंट रोल किया रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी में, और उसके फौरन बाद अगले साल आई बेफिक्रे, जिसमें ही वॉज लाइक लिटरली एक बेफिक्रे से लड़के का उन्होंने रोल किया, और कम्प्लीटली डिफरेंट अपना पर्सनैलिटी, जॉनर, और जो वो कमाल कर सकते हैं एज एन एक्टर, वो हमें रणवीर सिंह ने दिखाया है एक बार नहीं, कई बार, बार बार हमने देखा है उनके एक्टिंग के कमाल को. अच्छा जी, अब जो गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी, दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी पद्मावत, बिकॉज राइट आफ्टर बेफिक्रे आई अगली मूवी 2018 में. डेढ़ साल का अराउंड, डेढ़ साल रणवीर सिंह गायब रहे, और फिर आए वो पद्मावत के साथ, और उन्होंने सुल्तान का रोल पद्मावत में प्ले किया, एंड दैट रोल वॉज एब्सोल्यूटली ब्रिलियंटली प्लेड. एक्टर, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड जीता पद्मावत के लिए रणवीर सिंह ने, और बेस्ट एक्टर पॉपुलर की नॉमिनेशन भी पाई, लेकिन फिल्म फेयर में जीता अवार्ड क्रिटिक्स के लिए, क्रिटिक्स का, बेस्ट एक्टर का. सो दिस इज पद्मावत फॉर यू, एंड दिस इज खली मल्ली.

0: echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
5: ये क्या होता
6: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
16: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
18: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

राइट, एंड विद दैट बिगड़ने दे, थोड़ा थोड़ा बिगड़े और थोड़ा थोड़ा संभले भी रहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी होता है. वो कहती है ना, म्याना रवि इख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा जी, आपके लिए आया है फूडिस्तान की तरफ से गिव अवे. सबसे पहले आपको बताऊं कि फ्रेश ग्रोसरीज, हलाल मीट, प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, सब कुछ मिलता है फूडिस्तान में. अबरी में लोकेटेड है फूडिस्तान, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ जी. और भी मल्टीपल लोकेशंस हैं, बट दिस वन इज फोकस्ड ऑन ऑबरी. और साथ ही साथ अगर आपको शॉपिंग करते करते दिल कर रहा है लाइव पानी पूरी खाने का, यानी कि बस बन रही हो और आप खाना शुरू कर दें, तो वो भी यहाँ मिलेगी आपको. फ्रेश गन्ने का जूस और भी बहुत कुछ अवेलेबल है. और इसके साथ अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस इनसाइड फूडिस्तान एट ऑबरी इज ऑल्सो happening right there. Aur saath hi saath they offer lowest price match guarantee on groceries and free delivery on orders just over $30 within 5 miles. To ye to hua aapke liye ki aap foodistan mein जाइए, शॉपिंग भी कीजिए, कुछ खाइए भी, एंजॉय भी कीजिए. और अब आ रहा है आपके लिए ये गिव अवे, एंड दैट गिव अवे इज अ फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट. दैट इज एन अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान. अगर आप ये फ्री आइटम जीतना चाहते हैं फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, तो आपको मुझे कॉल करके, आज हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डाली है रणवीर सिंह पे, और उन्हीं के बारे में बात, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज्ड कुछ बेहतरीन गाने मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ. और सवाल आपसे बहुत सिंपल है कि अभी मैं ये जिक्र कर भी चुकी हूँ, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा. बताइए कौन सी वो फिल्म थी जिसके लिए रणवीर सिंह ने जीता अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड. और मुझे ये भी बताइएगा कि अवार्ड कौन सा था. तो व्हाट अवार्ड डिड ही विन एंड व्हिच फिल्म डिड ही विन फॉर द वेरी फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड दैट वाज गिवन टू रणवीर सिंह. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, फोन उठाइए, कॉल मिलाइए.

0: ऑलराइट, गाना भी मैंने वही लगा दिया था ताकि आपके लिए जवाब और भी आसान हो जाए. जिस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने जीता अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड, दैट वाज बैंड बाजा बारात. 2011 में ये अवार्ड जीता था उन्होंने. बेस्ट मेल डेब्यू वाज द अवार्ड दैट ही वन. जी हाँ, और आपके लिए फ्री आइटम आया था डिवाइब रेस्टोरेंट की तरफ से, एन अपस्केल रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी. और आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का और पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैथ के फॉर्मूले में जिस तरह लाइन में आपके कॉल्स आते हैं उस तरह मैं नंबर डालती हूं और फिर जो हमारे लकी विनर होते हैं वो उनकी लक ही डिसाइड करती है. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं जहीर अहमद. जहीर, कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए ताकि आपका नाम और नंबर फूडिस्तान यानी कि डिवाइब रेस्टोरेंट पहुंचाया जा सके. एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days टू गो एंड अवेल योर फ्री आइटम. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, फन एज इस तरह की बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. आपकी पार्टिसिपेशन इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट. और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इट माइट बी योर चांस. अपना टाइम यानी कि आपका टाइम राइट बी राइट अराउंड द कॉर्नर.
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला? कौन बोला?

जी हाँ, गली बॉय से सुन रहे थे आप ये गाना। गली बॉय के लिए नॉमिनेशन पाई और जीते भी फिल्म फेयर अवार्ड रणवीर सिंह। अच्छा, अवार्ड्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं कि कुल मिला के 111 बार रणवीर सिंह ने नॉमिनेशंस पाई है अपने इस करियर में, जो कि 2011 से 2009 से गालिबन शुरू हुआ। जी हाँ, 2010 से एक्चुअली शुरू हुआ उनका करियर, अब 2026 है और अब तक 111 बार नॉमिनेट हो चुके हैं इन डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज, चाहे वो जी सिने अवार्ड हो, स्टारडस्ट हो, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स हो, फिल्म फेयर हो एंड मेनी मोर। इन 111 में से 79 टाइम्स ही हैज वन द अवार्ड। और आपको बताऊं कि 2011 से लेके 2024 तक रणवीर सिंह अबाउट 7 बार नॉमिनेट हुए। द फर्स्ट ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर बैंड बाजा बारात बेस्ट मेल डेब्यू, जो उन्होंने जीता। गोलियों की रासलीला रामलीला 2014 में ही गॉट द नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर, उसी वो उन्होंने नॉमिनेशन पाई, ही कुडंट विन। 2016 में ही गॉट अनदर नॉमिनेशन फॉर बाजीराव मस्तानी बेस्ट एक्टर एंड दैट वन ही वन। 2019 में एक बार फिर नॉमिनेशन पाई पद्मावत के लिए फॉर बेस्ट एक्टर, बोथ पॉपुलर एज वेल एज क्रिटिक्स। पॉपुलर नहीं जीत पाए बट क्रिटिक्स ही डिड विन। गली बॉय 2020 में ही गॉट द नॉमिनेशन एंड ही वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। 2022 में ही गॉट अनदर नॉमिनेशन फॉर द मूवी 83। ये नॉमिनेशन बोथ बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए थी। ही वन द बेस्ट एक्टर, ही डिड नॉट विन द बेस्ट क्रिटिक्स। और उसके बाद 2024 में ही गॉट हिज लेटेस्ट, जो लास्ट की नॉमिनेशन है फिल्म फेयर की, वो थी फॉर द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसके लिए ही गॉट द नॉमिनेशन बट ही कुड नॉट विन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 7 नॉमिनेशंस जो उन्होंने हासिल की, और इन 7 में से 7 और यू नो मल्टीपल 7 मूवीज के लिए जो नॉमिनेशंस उन्होंने हासिल की, जिसमें से उन्होंने 5 दफा अवार्ड जीता।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: I've been researching retirement planning.
10: Oh, really? Where?
9: Google, YouTube, a guy on TikTok.
10: Or you could just talk to WealthTactic.
9: What's the difference?
10: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
11: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
12: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
13: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe.
15: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com. Loan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
16: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
12: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
16: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
13: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर. फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट, और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
18: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to game.
19: Dallas ki dhadkan 104.9 FM FunAsia Radio.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran May, Bollywood Spotlight. Every Tuesday, we, you know, shed some light on those stars jinhone hame kuch amazing music diya hai. Bollywood mein actors ho, producers ho, directors ho, music composers ho, lyricists ho. Anyone and everyone is celebrated right here on Sunehri Kiran. Aaj ki spotlight dali hai humne Ranveer Singh pe. Aur kuch khoobsurat gaane aapke liye maine Ranveer Singh ke play kiye. Abhi agle 10-20 minute mein aur आपके लिए चंद लाइंड अप गाने रणवीर सिंह के प्ले करने वाली हूं. एंड देन फ्रॉम 4:30 ऑनवर्ड्स इट विल बी ब्लॉकबस्टर बीट्स विद लॉट्स ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज लाइंड अप फॉर यू. सो सबसे पहले बिफोर आई प्ले दिस नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू, ये तो आप गाना सुन रहे थे जी जश्नेश का, लेकिन एक पिछले 2 सालों में जो धुरंधर मूवी आई है जिसने बहुत ज्यादा रणवीर सिंह को लाइमलाइट में ला के खड़ा कर दिया है. कुछ जगहों पर उन्हें नॉमिनेशन भी मिली, कुछ जगहों पर उन्हें अवार्ड्स भी मिले धुरंधर मूवी के लिए, और हजारों करोड़ों का बिजनेस किया इस फिल्म ने. उसके एक दो गाने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के आपके लिए लाइनअप है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप किसी ऐसे हेल्थ केयर यू नो प्राइमरी केयर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी सेहत को, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है आपकी सेहत, उतना ही वो भी उसे इंपॉर्टेंट समझें. दे फील द सेम पैशन फॉर यू जस्ट एज मच एज यू आर फीलिंग फॉर योर सेल्फ. तो वो जगह है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज यहाँ पे हर अपॉइंटमेंट 30 मिनट्स के लिए स्केड्यूल किया जाता है. कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि डॉक्टर आए 5 मिनट में उन्होंने आपको देखा, वो कहते हैं ना हाजिरी लगाई और चल दिए, ऐसा नहीं है. द डॉक्टर विल स्पेंड टाइम विद यू, द अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, एंड दे आर सर्विंग यू, योर फैमिली, in the entire community and with the same passion. 30 minutes is all it takes for you to complete your annual exam. Anxiety care, fibroscan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, ya aur bhi bahut kuch, matlab aapki puri health care passion health primary care pe they take care of it. You can call them to schedule your appointment by calling them at this number 214-666-6259. 214-666-6259 unka number hai ji. Aaj hi call kijiye to book your appointment. And always remember that Passion Health Primary Care is the place where your health is truly considered as their passion.
1: Gentlemen, you are not ready for this.

ऑल राइट जी, वैसे तो कारवां की तलाश है एक बहुत ही पुराना गाना, एक बहुत ही पॉपुलर नंबर, लेकिन ये भी खराब नहीं था. दिस एक्चुअली पुट द, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को वापस जेर बहस ले आया जाता है इस तरह के रीमिक्सेस बना के. कुछ गानों को दोबारा से एक नई लाइफ मिल जाती है, नई जनरेशन उनके साथ कनेक्ट होती है विद दीज रीमिक्सेस दैट वी हेयर. तो कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बट इट स्टिल ब्रिंग्स दैट कनेक्शन विद द यूथ जिसको हम ढूंढ रहे हैं. अच्छा जी, रणवीर सिंह का ये सेगमेंट अब हम रैप करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि कुछ शॉर्ट मूवीज, तो बड़ी बड़ी मूवीज में तो रणवीर सिंह नजर आते ही रहे, लेकिन कुछ शॉर्ट फिल्मों में भी रणवीर सिंह ने काम किया, जैसे कि रणवीर चिंग रिटर्न्स, दैट वॉज इन 2016, कैप्टन चिंग राइजेज 2018, जबकि 2022 में ही वर्क इन अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड मेड इन India, and 2025 में Agent Ching Attacks, that was his short film. इसके अलावा टेलीविजन पे हमें रणवीर सिंह कई बार देखने को मिले. 2021 एंड 22 में एक शो आया था, आप कह लीजिए गेम शो, द नेम वॉज द बिग पिक्चर, उसके होस्ट थे रणवीर सिंह. 2022 में अगर आपको याद हो, रिलीज हुई थी द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, जिसमें गौरी खान भी थी और भी मेरे ख्याल नीलम भी थी एंड ऑल दैट, उसके अंदर कैमियो अपीयरेंस था इनका. उसके बाद द रोमांटिक्स आया 2023 में, उसमें ही वॉज यू नो इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंड प्रॉबली ही वॉज देयर. एंग्री यंग मैन आया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स है या अमेजोन पे है, जिसमें दे टॉक अबाउट यशराज एंड उनके बैनर में जो एंग्री यंग मैन की फिल्में बनी. और साथ ही साथ 2025 में ही गेव अ कैमियो अपीयरेंस टू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, दिस वाज अ वेब सीरीज. तो ये कुछ रणवीर सिंह की कुल जो उन्होंने काम किया उसका लुबाब मैं आपको बता रही थी, यानी कि उसका सारा तस्करा मैंने आपके साथ किया. लॉट्स ऑफ वर्क दैट ही हैज डन. लेकिन जो कमाल की बात है वो ये कि ऐसा नहीं है कि कोई हजारों फिल्में हों इन्होंने चिप्स में काम किया हो, मगर जितनी भी फिल्में काम करी वो बड़ा आप कह लीजिए कमाल का कंटेंट हमें देखने को मिला. और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह की जिंदगी में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है टू ब्रिंग हिम टू द स्टैचर वेयर ही इज टुडे.

धुरंधर अगेन या रिवेंज कह लीजिए, उससे सुन रहे थे आप ये गाना. और आज की जर्नी जो हमारी बॉलीवुड स्पॉटलाइट में रणवीर सिंह पे हमने डाली, व्हाट एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जर्नी. ऑल द बेस्ट फिल्म्स एंड बेस्ट सॉन्ग्स मैंने कोशिश की आपके लिए प्ले करने को. और बस अराउंड एक दो गाने प्ले करके हम इस सेगमेंट को रैप अप करने वाले हैं. विद दैट वी विल बी एंटरिंग इन टू आर ट्रैफिक currency, weather update as well as gold price update. और साथ ही साथ पूरा debt relief के साथ आपको connect करेंगे, जो आपको बताएंगे कि आप अपनी debt को कैसे control में ला सकते हैं. All this and much more still lined up for you right here on your afternoon drive with Suneri Kiran. कहीं मत जाइए, channel बिल्कुल मत बदलिए.

0: रणवीर सिंह जी हाँ, एक बहुत ही वर्सटाइल और इंटेंसली कमिटेड बॉलीवुड मेथड एक्टर आप इन्हें कह लीजिए. इन्हें नोन फॉर इज एक्सप्लोजिव ऑन स्क्रीन एनर्जी. मतलब जैसे बिल्कुल शुरू शुरू में मैंने इस प्रोग्राम के कहा था कि शाहरुख खान के बाद अगर इतनी एनर्जी किसी में मैंने देखी तो वो रणवीर सिंह थे. जो स्टेज के ऊपर या कहीं भी आप उन्हें देख लें तो वो टिककर नहीं बैठते. वो जैसे कहते हैं ना, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो करते हैं बड़ी आसानी से. किस हर रोल में फिट हो जाते हैं, चाहे वो एक यंग लड़के का रोल हो या फिर किसी बाजीराव मस्तानी जैसी एक बहुत ही यू नो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल हो, या फिर खली बली वाला पद्मावत वाला रोल, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग रणवीर सिंह के टू, या फिर धुरंधर हो. सो वी सेलिब्रेटेड रणवीर सिंह टुडे. वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.
1: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
4: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
3: क्यों?
4: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
3: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
6: इट्स लॉसन.
5: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
6: इट्स लॉसन.
5: डैडी व्हाट इज द लॉ?
7: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Documents ya parcel bhejni hai?
10: हाँ.
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: जिंदगी एक रंगमंच है
13: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
14: कॉल 972-897-1530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल .com.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
0: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
10: डोंट टच दैट डायल, कीप लिसनिंग।

0: 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में टाइम आ चला है आपको कनेक्ट करने का हमारे उरा डेट रिलीफ सेगमेंट के साथ. हमारे साथ मौजूद हैं आज उरा डेट रिलीफ के अमन जी, जो हमें बताएंगे कि हाउ कैन उरा डेट रिलीफ प्रोग्राम हेल्प यू इन मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड मेकिंग द राइट फाइनेंशियल डिसीजंस. लेट्स वेलकम अमन जी ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशिया. गुड आफ्टरनून अमन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: ऑल गुड. फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. सो बार बार हर बार यही बात दोहराता हूँ, याद कराता हूँ कि मंथ खत्म होने वाला है और फिर वो गलती हम ना दोहराएं जो हम हर महीने दर महीने दोहराते हैं. यानी कि हम क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देते रहते हैं और वो क्रेडिट कार्ड है कि उतरने का नाम ही नहीं लेते. और अगर आप भी परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं उतर रहे हैं, आप मिनिमम पेमेंट दे दे के तंग आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड हेल भी नहीं रहे हैं, तो जस्ट कॉल उरा. उरा आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवा देगा. आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा, जो बाकी आधा बचेगा उसकी आसान सी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स बन जाएंगी. और ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स को भी आधा माफ करवाया जा सकता है. आपकी गाड़ी का लोन जो रिपोजेस हो गई है उसको भी आधा माफ करवाया जा सकता है. और आपका जो पर्सनल लोन के साथ साथ अगर गाड़ी टोटल हो गई है उसका लोन भी आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है. तो जस्ट गिव अस अ कॉल 1-888-888-9914 1-888-888-9914 या फिर आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं. माय डायरेक्ट नंबर इज 9167763555 9167763555 अगेन 9167763555. Thank you.
0: Thank you so much, Amanji. We will talk to you next time. Well, that was very important. Please take that note of the number and give them a call if you need that assistance.

एंड विद दैट आपको करेंसी की अपडेट देते चलें जी कि आज यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.87 पे, ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74, इंडियन रुपी 96.32 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि कनेडियन डॉलर 1.40 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 278.09 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर, जबकि नेपाली रुपी इज 154.19. बांग्लादेशी टका इस वक्त ट्रेड कर रहा है जी 123.25 पे. दैट वॉज आर करेंसी अपडेट. और अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो आई विल गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट कि आज सोने का क्या भाव है.

खूबसूरत गाना टेकन फ्रॉम गोलियों गोलियों की रासलीला रामलीला, लेकिन पिक्चराइज हुआ था, स्पेशल अपीयरेंस प्रियंका चोपड़ा ने दिया था हमें इस फिल्म में। अच्छा जी, इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट अकॉर्डिंग टू goldprice.org राइट नाउ 4:53 PM इन द स्टूडियो July 14th विच इज ट्यूजडे। गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ इज $4,052.07 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है जी $130.28। कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.71 का इजाफा हुआ जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $53.19 का इजाफा देखने को मिला। बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनील किरण। आई स्टिल हैव अबाउट 7 मोर मिनट्स विद यू। वी आर गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई विल कम बैक विद यू टू शेयर द ट्रैफिक अपडेट। व्हेन यू आर ऑन द रोड्स यू मस्ट बी केयरफुल।

Welcome, welcome, welcome, welcome back to your evening drive time show right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. This is Banda Bindas, Marvin Das. I'm going to be with you till 7 o'clock. This is your favorite evening drive time show, jiska naam hai Ji The Bindas Show. Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. I give you company. It's 5:10 in the studio clock, 5:10. Today's date is the 14th of July. We're in Tuesday, on a Tuesday rather. And Tuesday ko hum bolte hain Ji Mangalwar. Aur iski simple equation hai ki man ki baat biwi se aaj ke din nahi karni. Ladai honi ki shanka hai. This is our, you know, public इंटरेस्ट में लॉन्च किया हुआ मैसेज. बट व्हाट अ वंडरफुल गेम ऑफ सॉकर वी सॉ टुडे. क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एवरीबॉडी वाज थिंकिंग फ्रांस इज गोना टेक दिस वन, बट इन अ चेंज ऑफ थिंग्स स्पेन केम आउट स्ट्रॉन्गर, विनिंग द गेम 2-0 एंड पुटिंग देमसेल्व्स इन द सेमीफाइनल. देखते हैं जी अब अगली गेम विच इज टुमारो, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना. ऑल्दो everybody is rooting for Argentina, everybody believes so ke Argentina jeetega. I have my speculations. I think England might just come out and defeat Argentina tomorrow, but what a game today. France entered the match eager to make another tournament run, but faced early adversity with injury during the opening minutes of the semi-final. I think that was a lot to play in today's game. Spain, of course, relied on the possession-heavy style of play to dictate tempo, jo hamesha wo chalate hain. It was noted that if Spain controls the midfield and forces France to chase the ball, it makes for a slow, highly strategic affair. At the end of the day, jo jeeta, wohi Sikandar bhaiya. And jab baat ki hai uski, to kyun na ho jaye wohi gana from that movie. Ke nahin, samjhe hain, wo hame, to kya jata hai, hai na? To chalo, let's start this day off. And this is also a learning for all of us. कई बार जब किसी ने उम्मीद नहीं की होती, एंड ऐसा हर जगह होता है, काफ़ी जगह होता है कि हमें या हाँ लोगों को हमारे से उम्मीद नहीं होती, वो सोचते हैं क्या करेगा. बट यू व्हेन यू डिसाइड समथिंग टू डू, व्हेन यू वांट समथिंग दैट यू वांट टू डू, नोबडी कैन स्टॉप यू. जो जीता भैया वही सिकंदर. एंड कीप पुशिंग ऑन, अपना दिन आएगा ब्रो,

और निकले थे भैया आज बिल्कुल झूम के. स्पेन डिड सो वेल टुडे. इट वाज सच अ नाइस गेम एंड द यू नो द फेवरेट्स वर एक्चुअली फ्रांस. बट किस्मत जब निकलनी होती है, चमकनी होती है, तो ऊपर वाला कब किसका साथ दे, यू नेवर नो. फॉर नाउ इट इज वन मोर ट्रैक और उसके बाद चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ. ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक आई गॉट सम गिव अवेज कमिंग अप फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड टू बिंदास शो ओनली ऑन फन एशिया.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: अरे यार, घर मिल गया?
14: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
14: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
2: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
15: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
16: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

ऑलराइट भैया, बड़ी टेंशनें होती है लोगों को गाड़ी लेने के टाइम पर, मैं आपको गाड़ी लेने का सोल्यूशन बताने लगा हूँ। देखो, अगर आपकी, हमारी भाभी थोड़ी सी हैवी सेट है तो आपको लेनी चाहिए कोई एसयूवी, ठीक है। अगर आपकी वाइफ मिड सेगमेंट में है तो आप ले लें कोई टेस्ला शेस्ला, और अगर आपकी वाइफ बिल्कुल हल्की फुल्की है तो फिर आप ले लें स्मार्ट कार। और जिनकी वाइफ नहीं है उनको क्या, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ लेनी है चैन की सांस। तो चैन की सांस लीजिए और बाकी टेंशनों को कहीं और दे दीजिए। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इट्स 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, यानी कि 5:25 हो चुके हैं। ट्यूसडे की शाम है, 14 जुलाई है। गाने मैं अच्छे अच्छे लगा ही रहा हूँ जी, कंपनी आपको दूंगा 7 बजे तक। इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड विच इज मेकिंग यू जॉयफुल टूडे, यानी कि बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी खुशी की बात आपकी लाइफ में है, या किसी तक कोई प्यार भरा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे क्यूपिड बड़े बचपन से क्यूट लगते थे, मैंने कहा चलो मैं भी क्यूपिड बन के देखूंगा, ज्यादा मत उड़ाना, गिरने की शंका है। उसके अलावा इफ यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ, इफ यू थिंक गॉड इज ग्रेट टू गिव अस अनदर डे, जैसे कि मैं कहता हूँ सुपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, व्हेन एवर ही वेक्स मी अप फॉर द मॉर्निंग्स आई थैंक हिम, एंड दैट ब्लेसिंग इज नॉट अचीवेबल बाय ऑल एवरी डे। तो जिस जिसको एक दिन देखने को मिलता है उसके लिए उस सुपर वाले का धन्यवाद। थैंक यू फॉर सो मेनी थिंग्स दैट ही गिव्स अस विदाउट अस आस्किंग, चाहे वो जॉयज ऑफ लाइफ हों, आर फैमिली, आर फ्रेंड्स, आर जॉब्स, एंड समटाइम्स वी सॉर्ट ऑफ सोचते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड, हाँ ठीक है सब कुछ है तो सही, बट है जो जिसने दिया है, आपकी मेहनत भी उसमें जरूर है, बट ऑलवेज थैंक द ऑलमाइटी who's always there for you. This is your show and the studio lines are now open for you. 972-235-5555 is the number to the studio. And agar koi achhe gaane request karna chahte hain, I'll be definitely with you in that effort of yours. For now, it is from the movie Dhamaal 4. Ajay Devgan is back with Ritesh Deshmukh and a lot more in the cast.

0: धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ दे इस राह को, सोचा था छोड़ दे इस राह को, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। चलता रहना चाहिए जिंदगी में कुछ ना कुछ। आपकी जिंदगी में अगर दूसरा घर आपने ले लिया है, पर आप ये परेशान हो रहे हो घर का सामान कैसे मूव करना है। अच्छा, घर आपने ले लिया है न्यूयॉर्क में, आप रहते हो डैलस में, अब यहाँ से घर कैसे मूव करना है। और घर में जो आपने वो टेबल लेके रखा था, और वो डाइनिंग टेबल और वो ड्रेसिंग टेबल, जो भाभी वाला ड्रेसिंग टेबल पता है ना आपको, जो घर में लगा हुआ है, वो जिसपे शीशा का काम हुआ है काफ़ी सारा, बेटा अगर वो टूट गया ना मूव करते हुए, तो आपका क्या होगा वो तो बात की बात है। जो मूव कर रहा होगा उसका क्या होगा वो भाभी बताएंगी। अभी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम ये सामान टूटने नहीं देंगे, आपके प्यार की निशानियों को, मतलब दूसरे वाले नहीं, जो लाइफ जीते जागते निशानी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो घर में आपकी प्यार की निशानी है, जैसे आपने सोफा लिया, कोई टेबल लिया, कोई डाइनिंग टेबल लिया, कोई शीशे के सेंटर टेबल्स लिए, कोई बड़े अच्छे स्कल्पचर लिए, कोई आपने ग्रैंडफादर क्लॉक ली, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास लोग हैं जी। और ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि सब कहते हैं बल्ले बल्ले, SFL वर्ल्ड वाइड जी कंपनी का नाम। आज मेरे साथ जुड़ेंगे राहुल। गुड आफ्टरनून टू यू।
1: गुड आफ्टरनून मॉविन, हाउ यू डूइंग?
0: गुड मैन, कभी करेक्ट भी कर दिया करो, गुड इवनिंग का टाइम है ये। मैंने गुड आफ्टरनून कर दिया, आपने मान लिया, चलो कोई बात नहीं। कमिंग बैक, गुड इवनिंग टू यू भाई। ये बताइए कि SFL वर्ल्ड वाइड, यू नो आई हैव सेड द होम मूविंग पार्ट, थोड़ा सा उसको बताएं, उसके बारे में बताएं, व्हाट ऑल डू यू डू, एंड देन ऑल्सो टॉक अबाउट द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस दैट यू प्रोवाइड फॉर बिजनेसेस, एंड देन ऑफ कोर्स द ओवरसीज शिपिंग एंड ओवरसीज मूविंग।
1: So SFL Worldwide is a logistical company. We are into multiple things. We are into relocation. We are into shipping. We are into, you know, for business people, we also do a lot of things. So let me explain this a little bit in detail. तो पहले मैं जो normal है users, मैं उनकी बात करता हूँ, not for business.
0: बिल्कुल।
1: तो अब समझिए आपको कोई चीज़ आपका काफ़ी कीमती, maybe आपकी wife का कोई चीज़, या फिर maybe आपका भाई का कोई सामान आपको अगर US से कहीं,
0: मतलब कीमती से आपका मतलब वाइफ की कोई चीज़ या भाई वाइफ का भाई का सामान कोई घर में हो कीमती चीज़, अच्छा, और
1: या फिर आपको किसी को गिफ्ट भेजना है, सो SFL वर्ल्डवाइड आपकी इस चीज़ में काफ़ी मदद कर सकता है। सो व्हाट वी डू इज वी लाइक बेस्ड ऑन आवर कॉम्पिटिशन्स एंड वॉट एवर कॉम्पिटिशन्स वी हैव इन द मार्केट, कोई भी चीज़ अगर आप कहीं से भी भेज रहे हैं इंटरनेशनली या लोकली, तो वो चीज़ में आपको 40% लेस प्राइस में हम सेम चीज़ को शिप कर सकते हैं।
0: एंड आई कैन वाउच फॉर दैट, आई हैव यूज्ड द सर्विस FedEx, USPS, आई हैव कंपेयर्ड ऑल, एंड SFL एक्चुअली सेव्स यू अबाउट 40%, ये तो मैं गारंटी कर सकता हूँ। और बताइए।
1: अच्छा, वो तो हो गई एक बात। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर समझिए आप मूव कर रहे हैं कि मे बी यू आर मूविंग फ्रॉम यू नो डालस टू सैन फ्रांसिस्को, मे बी सियाटल, तो इतना सारा सामान जो आपके पास है, मे बी आपके पास कुछ कम सामान हो, मे बी एक या दो बॉक्सेस हो, या आपका पूरा सारा सामान बॉक्स से भरा हुआ है, तो वो सारा चीज़ को असेंबल करना, डिसेंबल करना और प्रॉपरली शिप करके सही तरीके से आपके नए लोकेशन पे लगाना, एवरीथिंग SFL वर्ल्ड वाइड डज फॉर यू इंटरनेशनली एंड लोकली एज वेल।
0: ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात जरूर बताना, क्योंकि दो बातें हो सकती हैं, सनम तेरे इनकार की, तो इनकार ना हो इसलिए तीसरी बात बताओ कि ये जो आप कस्टमर्स जो आपके कमर्शियल बिजनेसेस की तरफ काम करते हैं, देर आर मूविंग गुड्स फ्रॉम लेट्स से न्यूयॉर्क टू डालस और कैलिफोर्निया टू डालस, और फॉर दैट मैटर फ्रॉम एनी स्टेट इन द US टू अदर स्टेट्स, और फॉर दैट मैटर कमिंग फ्रॉम इंडिया, क्या वो भी आप प्रोवाइड करते हैं?
1: एब्सोल्युटली। अगर आपका कोई बिजनेस है, मे बी समझिए फॉर एग्जाम्पल यू ओन अ ग्रॉसरी स्टोर, और आपको काफ़ी बल्क में मैंगोज इम्पोर्ट करने हैं, तो वो चीज़ में SFL वर्ल्डवाइड कैन हेल्प यू अ लॉट। वी डू ऑल द यू नो ऑल द पेपर वर्क फॉर यू, एवरीथिंग, आपको कोई चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय SFL वर्ल्डवाइड।
0: वंडरफुल। आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिफोर आई लेट यू गो।
1: तो द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज यू कैन गो टू द वेबसाइट SFLWorldwide.com और यू कैन कॉल अस एट 800-691-2335।
0: 800-691-2335 इज दैट फोन नंबर। गाड़ी अगली बार कराएंगे ना गाड़ी को टाइम, बट बहुत बहुत शुक्रिया सर। गाड़ियां तक अगर आपने मूव करवानी है, SFL Worldwide कैन डू दैट फॉर यू। दे विल गेट योर कार्स मूव्ड इंटरनेशनली और विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड दैट्स द इजिएस्ट थिंग, SFL Worldwide, शिप फॉर लेस वर्ल्डवाइड को शॉर्ट कर लीजिए। गो टू SFLWorldwide.com, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड गेट योर सेल्फ गोइंग विद एनी ऑफ योर मूविंग और रिलोकेटिंग नीड्स।

गूंज की आवाज वापस आती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, रॉकी तो रॉकी रॉकी, सोनम सोनम, तो कहता मैंने भी आवाज लगाई, जिंदगी, तो कहता वापस आवाज आई, झंड है झंड है झंड है।

Conor McGregor, the Mr., you know, I call him somebody who's very childish plus thode arrogant and matlab phukra aadmi jisko bolte hai na hamare Punjab mein phukra. The Conor Anthony McGregor is celebrating his birthday today. Born on today's date, 14th of July 1988. 4 saal chota hai mere se, main isliye isko kuch kehta nahi hu ki chal chota bhai hai, bada ho jayega to seekh hi lega. Irish professional mixed martial artist, ultimate fighting championship, UFC featherweight and lightweight champion, becoming the first fighter to hold UFC championships in two weight class simultaneously. He's also a former cage warrior fighting championship, which was the CWFC featherweight and lightweight champion in 2008. Began competing professionally in the mixed martial arts, which is MMA, fighting in the lightweight and featherweight divisions. Today marks his birthday. Born in Dublin in Ireland, today is his 38th birthday. A very happy birthday to Mr. Conor McGregor from the team here at Funasia and from Banda Bindas Mar Bindas. आपको एक बात पूछनी थी मुझे कि अक्सर ना जब भी मेरा बीवी से झगड़ा होता है, और ये हेल्दी चीज़ें हैं, होना चाहिए, ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, दो मयन एक मयन में दो तलवारें, टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग. अब मुझे सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई जब हो रही होती है ना, तो बीवी बोलने का देती है, तो आपको पता ही है हम जब भी कुछ बोलने तो कहते हैं नहीं पहले मेरी सुनो, तो जब वो सारा कुछ कर लेती है उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है, फिर जाके मुझे याद आता है कि ओहो मुझे तो ये जवाब देना था. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लड़ाई के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैं ये पावर पॉइंट मार सकती थी, मैं ये प्रेशर पंप दबा सकती थी, वाइस वर्सा फॉर मैन और वुमन. जानना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं अकेला ही हूं कि इसको ऐसा लगता है कि यार ये मिस हो गया. कई बार आपको भी लगता है लड़ाई करते करते कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गए, फिर आप चाय की चुस्की लेते हुए सोचते हो चल अगली बार यूज करूंगा. 9722355555.

0: होता है ना, क्या होता है उसको बोलते हैं? अरे सर बताओ ना,
1: हाँ
0: वो
1: आप ही बताओ।
0: सबसे बड़ा अवार्ड देते हैं ना एक्टर्स उक्टर्स को, पद्मश्री, वो आपको दिया जाएगा। अच्छा
1: अच्छा
0: संदीप जी, ऐसा होता है आपके साथ भी कि लाइफ में मतलब लड़ाई होने के बाद रियलाइज होता है कि ओह शिट मैन, मेरा ये पॉइंट तो रह गया?
1: नहीं, देखो ऐसा है कि अगर आप वो पॉइंट सोचोगे तो फिर कोई नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए जान बची सो लाखों पाए, जहां लड़ाई खत्म वहीं डिस्कशन खत्म, जयराम जी की।
0: वाह वाह वाह वाह, मतलब ये होता है देखो, इसीलिए पद्मश्री आप डिजर्व करते हो, क्योंकि अपनी ख्वाहिशों को दबाना आपको बखूबी आता है बड़े भैया। और कौन है मेरे साथ? गुड इवनिंग फनेश, हाउ इज दिस?
2: अभी मैंने आपकी बात सुनी
0: पहले तो अपना नाम, हेलो,
2: और
0: एक मिनट मैम, हमारे यहाँ पे कहते हैं हेलो, गुड इवनिंग, हेलो,
2: अच्छा गुड
0: उसके
2: इवनिंग,
0: बाद हम पूछते हैं आपका नाम,
2: नाम बताना जरूरी है?
0: कोई और बना के बता दो यहाँ
2: चले ठीक है,
0: कौन
2: मेरा नाम है अनामिका।
0: सा। वाह क्या बात है, ये अनामिका, आपको भी पद्मश्री की तरफ जा रही हो आप भी। अच्छा
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अनामिका, आप बताइए कि ऐसा होता है कि यार बाद में लगता है कि डैम मैन, ये पॉइंट तो रह गया मुझे।
2: हाँ मेरे साथ इतने बार हो चुका है ना, इतने बार हो चुका है, तो मैं अब तो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आता है वो खुद के मुंह पे मार लेना चाहिए।
0: ओ हो, मुक्का नहीं, मुक्का नहीं, मुक्का तो ज्यादा हो गया, मतलब ये थोड़ी पंच लाइंस होती हैं जो बंदा अपने पास रखते हैं। नहीं, तो आप ना एक काम किया करो,
2: नहीं
0: आप ना एक लेजर
2: नहीं
0: बनाओ।
2: अब आई हैव गॉटन बेटर, आई हैव गॉटन बेटर राइट नाउ।
0: अच्छा अच्छा
2: तो
0: अब
2: अब ये होता है कि पहले तो बहुत लोगों को रीड करना पड़ा कि कुछ रिस्पॉन्सेज लोगों के लिए ऐसे होते हैं, सम पीपल डू नॉट प्ले गेम
0: बिल्कुल
2: राइट, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू बी अनफेयर टू देम बाय गिविंग देम अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स, करेक्ट?
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: एंड दैट्स वाई आप उस तरह नहीं सोचते हो कि ओ ये तो ऐसा नहीं बोल सकते थे और ये ऐसा सोच नहीं सकते थे, सो इसको मैंने इसलिए शायद जवाब नहीं दिया था।
0: तो बेसिकली आपका एडवाइस
2: लेकिन
0: एडवाइस ये है शॉर्ट में कि गेम नहीं खेलनी चाहिए ना किसी के साथ।
2: नहीं, लोग गेम खेलते हैं लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी रेस्पेक्टफुल आंसर
0: गॉट
2: जो
0: इट।
2: दोनों को काम आए, जो गेम्स खेलते हैं और जो गेम्स नहीं खेलते, दोनों के लिए।
0: मैं जब भी हार रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ जा, मैं गेम खेलता ही नहीं। जा, मैंने नहीं खेलना, जाओ।

0: आई मस्कारा।
1: मिसी मिसी यार मस्कारा खराब कर दिया ना तेरी वजह से, अगर मस्कारा खराब हो गया फिर तू अपना हाल देख लिया। भैया गुड इवनिंग फनेसिया, कौन बोल रहा है?
2: मैं संदीप बोल रहा हूँ सर।
1: संदीप जी कैसे हैं? बोलने दे रही है वो आपको, अकेले हो ना?
2: मैं देखो आवाज मेरी इसीलिए थोड़ी दब रही है, देखो
1: आप भाभी साथ है
2: तो नहीं, साथ में नहीं है बट उसके नाम से खौफ होता है।
1: क्या ये है, ये असली हस्बैंड ये निकला संदीप, आपको मिलेगा क्या वो भारत का सबसे बड़ा

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir puja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
9: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
10: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
11: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: It's Lawson.
12: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
13: It's Lawson.
12: Daddy, what is the law?
14: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
15: एक बात बता, retirement में सबसे scary क्या होता है?
16: क्या?
15: Salary बंद हो जाती है.
16: और bills? बंद नहीं होते.
15: Exactly. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
16: मतलब
15: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
17: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
18: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
19: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
20: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
21: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
20: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
22: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
23: इन प्लेनो.
22: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
19: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
24: जिंदगी एक रंगमंच है
25: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
17: कॉल 972-897-1530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल.
26: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Dum-dum-dum. Let's see who do we have with us on the air of the Funnish. Yeah, good evening to you, Funnish Radio. Kaun bol raha ji?
1: Main Tina bol rahi hoon. Good evening. How are you?
0: Hi, Tina. How are you?
1: I'm doing great.
0: God is good. Life is beautiful. Tina, do you know the name of the artist I was talking about?
1: Milin Gunaji.
0: Man, you're so quick. How did you get that? Did you like him when he just came out as an actor, or are you following him? What's going
1: mujhe
0: on?
1: Mujhe ye gana bahut pasand tha. एक्टर इतना नहीं बट ये गाना मुझे अच्छा लगा था और यू नो हमारे टाइम पे जो भी गाने आते थे बार बार सुन सुन के याद हो जाते थे.
0: हमारे टाइम पे क्या बातें करते हो आपकी बातों से तो आपकी उम्र
1: बात कर रही हो
0: आपकी बातों से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता. इट इज ऑल गुड टीना. बट टीना कांग्रेचुलेशंस. वुड यू लाइक टू गो टू द सुका लाउंज एंड एंजॉय योरसेल्फ?
1: ऑफ कोर्स.
0: ऑलराइट देन होल्ड ऑन फॉर मी. यस इट इज मिलिंद गुनाजी सेल जिनका जी ये गाना था. द मूवी वॉज फरेब. अभिजीत की आवाज थी जी इसमें. एंड दिस वॉज द ट्रैक दैट आई वॉज प्लेइंग फॉर यू ऑल. लेट्स कंटिन्यू दैट व्हाइल आई टेक डिटेल्स ऑफ टीना एंड गिव हर द मिराज लाउंज हुकअप डील.

ब्यूटीफुल ट्रैक एंड अ ब्यूटीफुल मूवी इट वाज, जिसका नाम था जी फिल्म का क्या नाम था, नाम कैसे भूल गया, हाँ जी फरेब, फरेब मूवी थी ये, तेरी आंखें झुकी झुकी एक्चुअली बिकेम अ वेरी पॉपुलर ट्रैक एट दैट टाइम। और उस टाइम की बात हम क्यों कर रहे हैं, उस टाइम की बातें नहीं करनी चाहिए, टाइम सारे अच्छे होते हैं, आज का टाइम भी अच्छा है, वो टाइम भी अच्छा था। जो अगला गाना लगाने लगा हूँ वो भी बड़ा डिफरेंट सा है, इट इज़ बाय एन आर्टिस्ट कॉल्ड रितविज, एंड रितविज इज नोन टू क्रिएट सम वेरी डिफरेंट म्यूजिक, एंड आई एम गोना टेक यू टू वन ऑफ हिज ट्रैक, दिस इज कॉल्ड बरसो।

0: इट वॉज मिलिंद गुनाजी विच वी वर टॉकिंग अबाउट. फिल्मों में काम किया, टेलीविजन में काम किया, मॉडल की तरह काम किया और राइटर और ऑथर भी रह चुके हैं एंड बहुत सारे रोल्स मराठी फिल्मों में और हिंदी सिनेमा में किए. मेड हिज अपीयरेंस इन 1993 पपीहा एंड सिंस देन परफॉर्मड इन ओवर 250 फिल्म्स एंड एक्टेड एज द होस्ट ऑफ द जी मराठी चैनल ट्रैवल शो जिसका नाम था भतकांती. टुडे वी आर रिमेम्बरिंग हिम बिकॉज ऑफ हिज मूवी एंड दिस कॉन्टेस्ट वी जस्ट प्लेड. एक छोटे से ब्रेक के वापस आया. Right here on Funasia.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
5: Tarikh par tarikh.
6: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
4: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
8: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
7: क्यों?
8: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
7: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com .com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
18: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
5: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
20: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
21: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details.

0: है पार्लर जाने वाली लड़कियों पर उंगली उठाने वालों, लड़कियों को मेकअप करने से रोकने वालों या लड़कियों के मेकअप को टोकने वालों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अच्छी खूबसूरत गाड़ियां ही सर्विस सेंटर जाती हैं, बाकी पुरानी खटारा गाड़ियों तो बंदा घर में बाल्टी और मग्गे से ही धो लेता है। तो भैया जी अगर जा रही हैं, जाने दो ना यार, उनका टाइम है, दिस इज द टाइम टू गो। उसके बाद कब जाना है, व्हेन बेटा, ऐसे थोड़ी जाएंगी यार, अभी जा रही हैं, आई एम गोइंग टू ब्यूटी पार्लर, लेट अस गो। जब बाद में ढांचा लगाना पड़ेगा तब ब्यूटी पार्लर जाके क्या करेंगे बेवकूफ लोगों, इसलिए अभी जाने दो। और भैया मेकअप बना है लड़कियों के लिए, बना है ना, तुम्हारे लिए बनी है ना गाड़ियाँ, तुम्हारे लिए बने हैं ना टॉय, वो ऑफ राइडिंग करनी है मुझे, क्या फिशिंग करने जाना है दोस्तों के साथ, मुझे बियर पीनी है दोस्तों, पियो ना। लड़कियों को मेकअप करने जाना होता है, लड़कियों को नेल बार जाना होता है, लड़कियों को मैनीक्योर पेडीक्योर कराना होता है, लड़कियों को अपनी एक्सटेंशंस देखनी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर्स किस्म के पर्स लेने होते हैं, क्लच ये वो टोट शोट, यार देखो अब टोटा फंसाया है तो टोट तो लेगी ना। और ये मेकअप बना है उनके लिए, मेकअप इज फॉर देम, चटनी थोड़ी लगाएंगी, मेकअप बना है उनके लिए, मेकअप लगाएंगी। छह बज के 27 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, भाभियों कैसी लगी मेरी ये बात, एंजॉय करो यार अपनी लाइफ, यू आर द श्यो श्या फी, यू नो जस्ट लाइक ओ माय गॉड सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, जस्ट ऑलवेज लुकिंग लाइक अ वाओ, इफ यू हैवंट सीन योरसेल्फ इन द मिरर जस्ट लुक एट योरसेल्फ नाउ एंड आई एम टेलिंग यू इट इज स्टिल वाओ।
1: शादी कर सकते हैं
2: क्वीन विक्टोरिया की
1: तरह, क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप, तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिलफरिया।

0: मस्कारे से याद आया, मुझे लगता है इस बारी जो इंडिया की टीम निकली है खेलने के लिए इंग्लैंड के साथ, द वनडे वाली टीम, उन्होंने अपने पीछे ना कान के काला तिल जरूर लगवाया हुआ, नजर ना लग जाए। हाय बाय गॉड, आज तो देख के ये लग रहा है, यही कहने का दिल कर रहा है, नजर ना लग जाए हमारे लड़कों को। आज इंग्लैंड का मैच था जी इंडिया के साथ, एंड मुझे लग रहा था कि आज फिर हमें जोर का झटका धीरे से लगेगा, बट आज इन्होंने इज्जत बचा ली भैया हमारी। 258 स्कोर बनाया था इंग्लैंड ने, और बड़ा जबरदस्त स्कोर है फॉर अ वनडे गेम। 47.5 ओवर्स दे गॉट ऑल आउट इन दैट टाइम, बट 258 runs, एंड उसमें भाग्यशाली मतलब भागीदारी थी, भागीदारी बोलते हैं ना, भाग्यदारी मतलब शेयर किया जिन्होंने रन बनाने के लिए, समझ जाओ मेरी लैंग्वेज को। जो रूट 76 ऑफ 76, लियाम डॉसन 68 ऑफ 83, बेन डकेट 43 ऑफ 45। देन केम इंडिया टू बैट, मुझे लग रहा था कि आज विराट भाई का बल्ला चलेगा, बट आज विराट भाई की जगह शुभमन गिल आए और बनाए 80 रन ऑफ 75 डिलीवरीज दे। वॉशिंगटन सुंदर 52 ऑफ 63, एंड वन मोर डिपेंडेबल गाय जो मुझे दिख रहा है जी, वो अक्षर पटेल है। काफ़ी बार इन्होंने हमारी गेम को बचाया, हिंदुस्तान को बचाया, एंड टुडे ही डिड द सेम थिंग, 57 ऑफ 52 नॉट आउट, गेटिंग द टीम टू 262 फॉर 4 इन 45.2 ओवर्स, यानी कि 28 गेंदें बची थी। चलो थर्सडे को एक और गेम है। हमारी टीम की प्रॉब्लम पता है क्या, हम एक मैच जीतते हैं तो हमें लगता है ला ला हम तो दुनिया भर के राजे हो गए, इसी चक्कर में लिपट जाते हैं लोग, है ना। बट आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, हम आज बात करने लगे अब इस सेगमेंट में इंपॉर्टेंट बात, आज का गेम जीत गया है स्पेन अगेंस्ट फ्रांस, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड था। सब ये सोच रहे थे कि आज फ्रांस जीतेगा, मबापे करेगा कुछ, पर मबापे के माँ और बापे दोनों उसको मारने के लिए तैयार होंगे कि मबापे तूने फेल करा दिया। खैर स्पेन जीत गया। अब कल का जो गेम है दैट इज अर्जेंटीना वर्सेज इंग्लैंड, 3 गुना लगान क्या अर्जेंटीना को देना पड़ेगा? आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, अकॉर्डिंग टू यू, लेट्स गेट योर होप्स फॉर टुमारो, लेट्स गेट द एक्साइटमेंट बिल्ड अप फॉर टुमारो, आई एम आस्किंग यू कि अकॉर्डिंग टू यू कल का गेम कौन जीतेगा? स्टूडियो का नंबर आपके लिए खुला है जनाब, 972-235-55-55, अकॉर्डिंग टू यू हु इज विनिंग द गेम? वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है दोनों में से, ये भी पूछ सकता हूँ, हु डू यू सपोर्ट मोर, बट आपके अकॉर्डिंगली जीतेगा कौन? आ जाओ जरा करते हैं इस फुटबॉल शुटबॉल हाय रब्बा की बात। चुनरी चुनरी से मेरा मतलब यह है कि कल की चुनरी कौन बचाएगा अपना, मतलब समझ रहे हो ना, इज्जत किसकी बचेगी, ये देखने वाला होगा कल का गेम, इज अ वेरी बिग गेम। उधर से जी है अर्जेंटीना जिसमें है मेसी मेसी, और दूसरी तरफ से इंग्लैंड जिनकी टीम का कमाल का मतलब अटैकिंग टीम है। गुड इवनिंग टू यू फनीजिया, हु इज दिस?
1: Hi, my name is Shweta.
0: Hi, Shweta. How are you?
1: I'm good. आप कैसे हैं?
0: I am fine. Apart from childhood, I fell, had some head injuries. They are sticking around for long. बाकी सब ठीक है। अच्छा श्वेता जी, आप फुटबॉल फॉलो कर रही हैं मुझे लग रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, और मैं आज तक जितना प्रेडिक्शन किया है सारा ठीक है। इनफैक्ट आज फ्रांस और स्पेन में मुझे लगा था स्पेन जीतेगा, एंड दे डिड विन एक्चुअली।
0: सो अब आप ये बताओ, ये इंटरेस्ट आपका गेम्स में सिर्फ ऐसे ही हुआ है कि कलशी वलशी का इसमें कोई चक्कर है?
1: नहीं, जनरली अच्छा लगता है, माय हस्बैंड इज आल्सो इंटरेस्टेड, तो मुझे भी लगा ठीक है चलो।
0: आपके हस्बैंड टीवी पे गेम देखते देखते अपने फोन को भी बार बार चेक करते रहते हैं क्या?
1: श्वेता
0: जी के आपके हिसाब से कल स्कोर क्या रहेगा?
1: स्कोर इतना तो नहीं कह सकती, बट डेफिनेटली जीतेगा अर्जेंटीना मुझे ऐसा लगता है।
0: अच्छा, मेसी गोल करेगा?
1: हाँ मेसी तो गोल करेगा।
0: आपकी इजाजत है?
1: हाँ जी बिल्कुल 100%।
0: आप ये तो फिर पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन हियर। गुड इवनिंग फनीजिया, हु इज दिस?
2: या दिस इज मोहम्मद हसन बोल रहा हूं।
0: आसान भाई, आई एम अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आप एहसान है तो एहसान ही पैदा कीजिए। ये बताइए कि कल कौन जीतेगा सर अकॉर्डिंग टू यू?
2: इंग्लैंड जीतेगा
0: 3 गुना लगान इंग्लैंड को ही।
2: वो यू आर गोना मेक श्योर?
0: नो ओके लेट मी, व्हाई डू यू थिंक
2: इंग्लैंड विल विन? बिकॉज अर्जेंटीना यू नो दे आर नॉट प्लेइंग दैट वेल दिस फीफा, इफ यू लुक बैक द हिस्ट्री ऑफ ऑल द गेम्स।
0: सर कहने को तो फ्रांस भी बड़ा अच्छा खेल रहा था सर, आज तो पटाखे ही बज गए। सो यू नेवर नो सर, होगा क्या आगे वो तो कल पता लगेगा, फिलहाल कौन है मेरे साथ. और गुड इवनिंग टू यू फनीश, हु इज दिस?
3: जीतेगा
1: हेलो.
0: आप कौन बोल रहे हैं? जी बोलिए.
3: वसीम की वाइफ बात कर रही हूँ.
0: वसीम की वाइफ बात कर रही हूँ. आपका नाम क्या है? वसीम की वाइफ, वसीम की वाइफ बात कर रही थी. वसीम की वाइफ कहीं चली गई, कोई बात नहीं. आई एम एक्साइटेड फॉर द गेम टुमारो नॉनदलेस. दिस इज गोना बी अ फैंटास्टिक गेम. और मैं अगर अपनी टिप्पणी दूं ना, तो मेरा क्या काम होता है कि मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि जो वीकर टीम है मैं उनको सपोर्ट करने लग पड़ता हूँ. क्यों? अब ये मेरे से ना पूछें, मेरा दिल, बस मेरा दिल है ना वो बेचारा थोड़ा सा ऐसा सा ही है कि वो वीकर टीम को सपोर्ट करता है. तो कल मेरा जो अंदाज़ा है जी, वो ये है कि कल का ये गेम जीतेगा इंग्लैंड. लेट्स सी. Remember the name AG FinTax if you haven't done your taxes yet. Extension A file करके आप बैठे हैं और भूल ही गए हैं कि taxes भी कोई चीज़ होती है. भैया it's very important. Don't mess around with Uncle Sam. And these guys at AG FinTax know their way around to get you the maximum benefits and the least amount of penalties. Get with AG FinTax on the website. That's agfintax.com.

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
3: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
10: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
0: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181, मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर अ कम्युनिटी, एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: Is shehar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
0: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
14: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस, या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: खामोशियां एक साज है।
17: May I have your attention?

जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे बिल्कुल लाज नहीं आती, लज्जा नहीं आती मुझे उस टाइम पे, बिकॉज खाना है यार, खाने को अगर आपने एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। और ऐसा ही अगर आपने खाना अभी तक तंदूरी फ्लेम पे नहीं खाया है, देन यू आर मिसिंग आउट। दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड राइट ऑफ शैलो एंड जॉर्ज बुश, कुकिंग अप सम यमलिशियस तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज एंड योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल तड़का। जरूर चेकआउट करेंगे जी इसको, फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज या फ्रेश फ्रेश गरम गरम नान और उनका क्या, हाँ गोभी मंचूरियन। When you go to Tandoori Flame and you don't have Gobi Manchurian, आपने बिल्कुल काम उल्टा कर दिया। मतलब वो कहते हैं ना, दही फेर दिया, क्या कहते हैं, रायता फैल गया। तो रायता मत फैलाइए, जाके वहाँ गोभी मंचूरियन खाइए। एंड दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी दैट इज़ लिविंग अराउंड गार्लैंड। अगर आप वाइली सैक्सी रिचर्डसन या इस साइड पर रहते हैं मर्फी एंड गार्लैंड ऑफकोर्स, देन यू हैव टू ट्राई तंदूरी फ्लेम। एंड अगर आप कभी उस साइड पर हो तब भी स्टॉप बाय, एंजॉय दिस लवली प्लेस कॉल्ड तंदूरी फ्लेम। उसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ एक और चीज़, क्या वो ये है जनाब कि अगर आप इस वीकेंड पे, गेम्स तो हो जाएंगी जी, कल एक हो जाएगी, उसके बाद फाइनल वीकेंड पे आएगा। अब भाभी अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो सैटरडे को आपने एक नई जगह खुली है, वहाँ ज़रूर जाना है। उसका नाम है PMJ ज्वेलर्स, ठीक है। अब आपको पता ही है कि बाकी इनकी इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, सब पैसे डुबा लिए ना। आप भाभी सियाणी हो, आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है गोल्ड में, और वो आपने करवानी है PMJ जाके। देखो डैलस में वैसे भी कुछ बहुत कुछ करने को है नहीं, है ना, तो बचता क्या है, बचते हैं रेस्टोरेंट्स, कभी मॉल चले

वो स्तिकुओं पे, मतलब साउथ इंडियन नाम में मैं वहीं ना कहीं फंस जाता हूँ यार। गट्ट मने नहीं, मतलब थोड़ा इजी कर दो हमारे लिए, गट्टू कह दूँ। बट नॉन द लेस भाभी, यू गॉट माई पॉइंट। दिस वीकेंड इट इज पीएमजे जूल्स।

ये इस गाने में कह रहे हैं, यार बिना चैन कहाँ रे। वो इनविजिबल चेन होती है जो आदमी के डल जाती है शादी के बाद। डल गया ना, देखो बन गया, हाँ बाकी संसद है।

बिल्कुल प्यार कर ले, और सबसे ज्यादा प्यार आपको करना है जी अपने आप से. एंड इफ यू रियली लव योर सेल्फ देन यू गोना टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बॉडी, एंड दैट स्टार्ट्स विद गेटिंग द राइट PCP एंड दैट इज योर डॉक्टर. एंड इफ यू हैवंट चोजन वन, देन आई रेकमेंड दैट यू गो विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दे हैव अ लोकेशन नेक्स्ट टू यू और नियर यू, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन हैं इनकी, ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी दैट यू लिव इन दे हैव अ लोकेशन फॉर यू. उसके साथ साथ why passion health primary care, because they are not the hi hello quick test and give you steroids or a quick relief at the spot, but they actually go in depth of what's causing the problem and cure the problem and not what are the symptoms. So when they meet you, they spend 30 minutes with you, not 5 minutes, not 7, 30 minutes, because passion health pe you're not just a patient, you are treated like family. For your family as well, if you have parents who like specific language

में उनको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है. प्लीज कॉल पैशन हेल्थ एंड देल एडजस्ट एंड मेक श्योर दैट देव गॉट पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज दैट योर पेरेंट्स आर कंफर्टेबल विद. 30 मिनट्स का कंप्लीट एनुअल फिजिकल एंग्जाइटी हो, या आपको फाइब्रो स्कैन, या आपको वाइटामिन बी12 डेफिशिएंसी लगती हो, एनीथिंग टू डू विद योर हेल्थ, दे विल मेक श्योर दैट यू ऑल वर टेकन केयर ऑफ. 214-666-6259 इज द फोन नंबर, दैट्स 214-666-6259. Book your appointment by giving them a call. Remember one name, Passion Health Primary Care. Google it. You'll find one near you. With that, it is time for me to say bye-bye, adios, good night. But I always want to tell you before I leave that your parents, of course, have actually, you know, at a stage, parents forget about expectations. All they expect is you guys to do well. If it comes to your kids, what do they expect? They expect you to be there for them as they are growing. For your wife, what does she expect? She expects you to be there for her and for the kids, and a secure future for herself and for the kids. Now, iske beech mein, did you see who was the main axle point? The axle point is you. Everything around you is all concerned with your well-being. So when you are the axis point, your happiness, your joy, your pleasures are also important. आप हम अपने आप को इग्नोर कर करके इस बाहर की यू नो चीज़ों को विच इज़ सराउंडिंग अस, उनको फोकस करते हैं, उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम अंदर से खुद टूटे हुए हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. यू गॉट टू मेंड योर सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड फर्स्ट. मेक श्योर यू मेक योर सेल्फ द प्रायोरिटी. आपकी ईटिंग राइट हो, आपका एक्सरसाइज राइट हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग्स फॉर योर बॉडी. एंड वेन यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, इवन इफ इट मीन्स टेकिंग अ ब्रेक, इवन इफ इट मीन्स टेकिंग अ हॉलीडे, you've been wanting to plan that trip with your friends, go do it, man. Who's stopping you? The only person that stops you is you. And whenever you correct everything within you, aapki biwi ki expectations puri hongi, bachchon ki expectations puri hongi, your parents desires and your joys of life, if you like eating, if you have that savory palate. But if you're not well, if you're sick, कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा बड़े भैया. सो इट्स ऑल स्टार्ट्स विद यू. मेन एंड वुमेन हु आर लिसनिंग टू मी, व्हेन यू लुक एट द पर्सन इन द मिरर एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. नॉट योर बॉस, नॉट योर वाइफ, नॉट योर मदर, नॉट योर किड्स. यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. रिमेंबर दैट. विद दैट, इट इज गुड नाइट, अदियोस, एंड आई विल सी यू टुमारो. इफ गॉड गिव्स मी अदर अपॉर्चुनिटी एट लाइफ, आई विल बी हियर एंटरटेनिंग यू फ्रॉम 5 to 7 with your favorite evening drive time show, The Bindas Show, only on Fun Asia Radio. Adios.